एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58.40 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। इस मंगल प्रभात में आप सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7

0: 7 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और आप हमें सुन रहे हैं FM बैंड 101.3 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम के आरंभ में समूह स्वर में आपने सुना देशगान। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अब हम आपको सुनवा रहे हैं माँ अम्बा की स्तुति। स्वर पंडित भीमसेन जोशी का है।

भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। कार्यक्रम में आप शामिल कर रहे हैं पारंपरिक रचना, स्वर अल्ताफ राजा का है।

0: गुंदेचा बंधुओं के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी बालाघाट का। सुबह के 6:30 और 55 सेकेंड्स हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आज की कड़ी में आलेख अनीता जोशी का।
1: जन्म से अंधे बालक सूर्यनाथ को माता स्नेह से सूरज कहकर पुकारते तो पिता दुलार से उन्हें सूरा कहा करते थे। बालक सूर्यनाथ अपनी माता से कहते रहते थे, माँ मेरा मन ध्यान करने को होता है पर तेरा कन्हैया तो कुछ बोलता ही नहीं। माँ ने बतलाया कि जब सूरज मन श्याम मन में एकाकार हो जाएगा तो तेरा सच्चा सखा श्याम तुझसे बातें करने लगेगा।

0: जन्म के संकरित संस्कार मां के आशीर्वाद से फलित हुए। सूरज के भीतर उसी की आवाज दूसरी होकर बोलने लगी। श्री कृष्ण की बंशी की धुन सुनाई पड़ने लगी। सूरज मन धीरे धीरे गुनगुनाने लगा और पद रचना करने लगा। और फिर ईश्वर कृपा कुछ ऐसी हुई कि संगीतक के भक्त के अंतर में अनंत नाद तरंगों से घिरा हुआ विग्रह केंद्र कवि हृदय में परिणित होने लगा और अपूर्व आनंद से भरकर पिता के दुलारे सूरज की आनंद समाधि भी लग जाया करती थी। कभी कभी भविष्यवाणियां कर जाते थे। एक बार आगरा में जाकर वे जिन लोगों को जानते थे उन्हें चेतावनी दे आए कि कब तीसरे पहर लोग अपने घरों से बाहर आकर खुले स्थानों पर रहें, पेड़ों के नीचे न सोएं, क्योंकि बड़ी विपत्ति आने वाली है। और भविष्यवाणी सही निकली। दूसरे ही दिन तीसरे पहर वहां भूकंप आ गया था। श्याम मन में रंगे सूरज की जांघों से लंबे सर्पराज लिपट जाते तो सर्पराज की लहराती छुअन से शरीर में सुप्त सूरज का मदन भाव जाग उठता। फिर भी छाती पर दंडवत पड़े सर्पराज की काया सहलाने लगते। तब उनकी छठी इंद्रिय मन जागृत हो उठता और स्वामी हरिदास के भजन गुनगुनाने लगते, क्योंकि दोनों ही तो एक ही बहती धारा के थे। कहते हैं प्रारब्ध के भोग नहीं छूटते। मां की आंखों का तारा सूरज, पिता का सूरा भक्त कवि और संगीतज्ञ सूर्यनाथ, नूर खां का बैल बनकर कोल्हे चलाने और अकारण चाबुक खाने को बाध्य था। नूर खां के कोल्हों का बैल बनकर बस्ती भर की औरतों और बच्चों के लिए तमाशा बन गया था सूरज। लेकिन ये सही है, वही हकदार है किनारों के जो बदल दें बहाव धारों के। एक समय ऐसा आया सूरज का श्याम में विश्वास ही उनका मेरुदंड बन गया। कहते हैं विरक्त की कुटी में द्वार नहीं होता, वो सबके लिए खुली होती है और अपने इष्ट के प्रति प्रेम अरूप में भी रूप भर देती है। जब चंचल मन स्थिर होता है तो सृष्टि के सारे व्यापार क्रियाकलाप मन से ही चलते हैं। सिद्ध पुरुषों की आलौकिक शक्तियों में जो दिखलाई पड़ता है वो मन की एकाग्रता का ही चमत्कार है। इसीलिए तो कहते हैं मन जीता तो जग जीता। सूरज के साथ श्याम मन संयुक्त हुआ और लोक कल्याण का सोपान खुला। महाप्रभु श्री वल्लभ भट्ट इलावास के अरेल क्षेत्र में पधारे थे और जब सूरज जो जन्म से अंधे थे तो दर्शन तो क्या करते। सूरज को देखते ही महाप्रभु ने उनकी बाह थामी और एकांत में ले गए। श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का 3 बार सूरज के कान में उच्चारण किया। समर्थ गुरु द्वारा सबीज मंत्र अक्षर सुनकर सूरज के कानों में मानो 8 सिद्धियां एक साथ मिल गईं और महाप्रभु द्वारा नामकरण कर दिया गया सूरदास। आज से तुम सूरदास हुए। श्री कृष्ण स्वरूप जगत गुरु आचार्य महाप्रभु ने अपने अंगूठे से सूरदास की छाती के मध्य भाग को स्पर्श किया और गुरु द्वारा प्रक्षेपित शक्ति सूरदास के अणुअणु में उजाला भर गई। गुरु की आज्ञा हुई, सूरदास मैं तुम्हें प्रभु लीला देखने और उसका बखान करने का आदेश देता हूं। आचार्य महाप्रभु ने अति प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम निरंतर श्री कृष्ण लीला के साक्षी रहोगे। तब से सूरदास के मन प्राण और चित्त सूर के नहीं होकर श्याम के लीला प्रांगण बन गए और गुरु के स्पर्श से मां के प्यारे सूरज को जगत ने सूरदास के रूप में प्राप्त किया।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे अनीता जोशी का लिखा आलेख। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का

बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:36:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर भूपेंद्र सिंह और शोभना राव के हैं। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के लिए संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर थे भूपेंद्र सिंह और शोभना राव के। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के लिए संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:47 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:50 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। नमस्कार बालाघाट, ये कार्यक्रम जो कि हमारा दैनिक कार्यक्रम है अपने नियत समय सुबह 7:21 पर प्रसारित किया जाएगा। हमारे स्टूडियो से सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8:30 का समय होगा साप्ताहिक पत्रिका कार्यक्रम सबरंग का। आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ होंगी हमारी सहयोगी माधुरी कटरे। सुबह 9:00 से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आपके लिए करेंगे। पत्रिका कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनते हैं सुबह 10:00, जिसका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी भोपाल से। सुबह 10:05 पर हमारे स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:30 का समय होगा NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। सुबह 11:00 से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों से एक बार फिर आप जुड़ सकेंगे, जिनका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी मुंबई से। आज की इस सभा में समाचारों का समय होगा प्रादेशिक समाचार सुबह 7:10 पर, जिसका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी भोपाल से। राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन समाचार प्रभात अपने नियत समय सुबह 8:00 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थी जानकारी हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की, और अब एक नज़र हमारी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा के प्रमुख कार्यक्रमों पर। हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में 5:00 युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा। 5:30 हमारे स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 6:00 हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट आप सुन सकते हैं। 6:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे। 7:21 पर किसान साथियों का अपना कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा। कुछ खेती किसानी की बातें होंगी, कार्यक्रम होगा किसान वाणी, प्रसारण समय 7:30। 8:00 हमारे स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 8:30 पर पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 6:50 22 सेकेंड्स हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत।

आनंद बख्शी का लिखा गीत आराधना फिल्म से आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थीं। इस गीत में संगीत आप एंजॉय कर रहे थे एस डी बर्मन साहब का। कार्यक्रम के अगले क्रम में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं के एल सहगल की आवाज़ में डी एन मोदक का लिखा गीत। ज्ञान दत्ता का संगीत है, फिल्म का नाम भक्त सूरदास।

राजा रानी। आइए इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाएं। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी की।

सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं अभिनेत्री फिल्म के गीत से। आवाज़ें एक बार फिर आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: अभिनेत्री फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सुबह के 7:10 हो रहे हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर आज बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों को 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी और राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी। नौतपा के दूसरे दिन आज कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती

0: क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज वे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को श्री शाह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को श्री शाह त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। भीषण लू के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने उनसे परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री चौहान के अनुभव को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दो विभूतियों श्री कैलाश चंद्र पंत और डॉ नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि प्रदेश की महान विभूतियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों, रचनात्मक लेखन और शोध कार्य के लिए दी गई दीर्घकालीन सेवाओं से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर वन स्थान पर है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेज गति से अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ यह फील्ड कार्य 30 मई तक संचालित किया जा रहा है। राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान

स्थान, परिवार और अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। राज्य में 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। दिनांक 25 मई तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,34,309 मकान सूचीकरण ब्लॉक में कार्य पूरा किया जा चुका है। 2,39,09,808 मकानों की गणना की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन आज भोपाल, ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इससे पहले नौतपा के पहले दिन कल प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। रांची में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की वायरल घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुनासा एसडीएम ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सुपरवाइजर दीपक मालाकार सहित 5 अन्य कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खदानों के नियम अनुसार संचालित न होने पर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। झाबुआ में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। पंचज अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए। भोपाल कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीएम जनमन अभियान, धरती आबा अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और आप हमें सुन रहे हैं FM बैंड 101.3 MHz पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर, साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स वेव पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

श्रोताओं सुप्रभात। नमस्कार, बालाघाट के दिनांक 26 मई 2026 के इस अंक के साथ आज मैं विनय श्रीवास्तव, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, रोजाना की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुविचार से। आज का सुविचार कहता है

शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर पाता। और श्रोताओं, इसीलिए कहा भी गया है कि स्वास्थ्य ही धन है। जब इस विचार पर चिंतन करते हैं कि शरीर की जो हिफाजत है, रक्षा है, सुरक्षा है, उसे हमें अपने धन से भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि से शरीर एक बार बिगड़ गया तो धन भी उसकी कई बार हिफाजत नहीं कर पाता। अब देखिए, शरीर इतना अनमोल है, भगवान का दिया हुआ, जिसकी कीमत हम अमूमन तभी समझते हैं जब वो बिगड़ जाता है। और हमारा जो स्वास्थ्य है वही धन है, ये जो बात कही गई है वो भी आज के इस विचार में शामिल है। जब इस विचार पर चिंतन करते हैं ना श्रोताओं, तो बात लगती है सही कि हमें अपने शरीर की हिफाजत, सुरक्षा अपने धन से भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि से एक बार यदि शरीर बिगड़ गया तो कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा भी है, कि धन भी हमारे शरीर

कथन है, ये जो बात कही गई है, वो भी आज के इस विचार में शामिल है। जब इस विचार पर चिंतन करते हैं ना श्रोताओं, तो बात लगती है सही कि हमें अपने शरीर की हिफाजत, सुरक्षा अपने धन से भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि से एक बार यदि शरीर बिगड़ गया तो कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा भी है, कि धन भी हमारे शरीर की हिफाजत नहीं कर पाता, सुरक्षा नहीं कर पाता। पिछले अनुभवों को देखें, विगत कोविड के दौर को, तो लोगों के पास बहुत से पैसे थे, लेकिन वो सब बैंक में थे और पास में भी होने के बावजूद वे नहीं बच पाए। इसके अलावा इस विचार पर और चिंतन करें श्रोताओं, तो देखिए हम इस बात की खुशी मनाएं और अपने ईश्वर को, अपने ईष्ट को, अपने आराध्य को हर पल धन्यवाद दें कि हमारे पास उनका दिया हुआ इतना अनमोल खजाना स्वस्थ शरीर है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग भी निवास करता है। श्रोताओं, शरीर की हिफाजत इसलिए भी करनी चाहिए कि देखिए जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करें कि हमारे पास दो हाथ दो पैर हैं और उन लोगों से बेहतर हैं जिनके पास शायद ही नहीं है। फिर और इस बात के लिए अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को शुक्रिया करें, धन्यवाद करें कि हमारे पास दो कान दो आँखें और हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं और हम अपने काम खुद कर सकते हैं। उन लोगों के बारे में कभी सोचें कि शायद जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो आपको लगेगा कि वाकई हमारा जो शरीर है वो अनमोल खजाना है, हर इंद्रियां हमारे लिए अनमोल हैं, इसलिए इनकी हिफाजत करना, इनकी सुरक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। और जब बात आगे बढ़ती है तो बात निकलती है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। अंग्रेजी में भी यही बात कही गई है, हेल्थ इज वेल्थ। तो यदि आप स्वस्थ हैं और आपके पास स्वस्थ शरीर है, तो हम समझते हैं कि आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। कभी सोचें उनके बारे में जिनके पास कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे तो बेहतर ही हैं। और फिर जब स्वस्थ शरीर होता है तो आप चाहे जितने पैसे कमा लें, ये आपके ऊपर है। तो बात वही आती है कि हम अपने शरीर की हिफाजत अपने धन से कहीं ज़्यादा करें, क्योंकि से शरीर बिगड़ने पर धन भी कई बार, पैसा भी कई बार, दौलत भी कई बार साथ नहीं दे पाती। इसलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और श्रोताओं, इन दिनों हर मौसम में की बात तो होती ही है, लेकिन इन दिनों चूँकि भीषण गर्मी पड़ रही है, तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि अपने शरीर का ख्याल रखें, अनावश्यक रूप से धूप से बाहर ना निकलें। और फिर अंग्रेजी में इसी बात से एक बात और जुड़ जाती है कि इफ़ योर कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट। इफ़ योर वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। बट इफ़ योर हेल्थ इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो बात वही आई कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो चलिए श्रोताओं, अपने शरीर की, अपने आप की हिफाजत कीजिए, सुरक्षित रखिए अपने आप को आने वाले कल के लिए, आज के लिए, क्योंकि इसे अपने आप को सुरक्षित रखना, महफूज रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो श्रोताओं, ये था आज का विचार जो हमसे कह रहा था स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और इसीलिए हमें अपने शरीर की, अपने आप की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। तो चलिए, ये था आज का सुविचार, और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ जाते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का एफएम चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। बनी रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम में ले रहे हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल। अंतराल के बाद हम लौटेंगे तो आपसे साझा करेंगे आज की तारीख से जुड़ा हुआ इतिहास। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, आज विनय श्रीवास्तव के साथ।
1: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
2: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी। चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9 4 2 5 8 3 6 8 2 4।
3: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स।
2: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज।
3: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता।
2: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
3: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 9406788702।
0: श्रोताओं, हम हाजिर हैं अपने वादे के मुताबिक आपसे आज की तारीख से जुड़ा हुआ इतिहास साझा करने के लिए। आज की तारीख 26 मई और इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें क्या कुछ खास है आज की तारीख का इतिहास। श्रोताओं, आज की तारीख है 26 मई और ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष का ये 146वां दिन है और वर्ष की समाप्ति में अभी 219 दिन बाकी हैं। चलिए 26 मई के इतिहास की बात करें, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें। अव्वल नज़र डाली जाए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर। आज की तारीख 26 मई 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट की इटली के नरेश के रूप में ताजपोशी की गई थी। 1889 में पेरिस स्थित एफिल टावर में स्वचालित सीढ़ियाँ जनता के लिए, आम जनता के लिए खोल दी गई थी। आज की तारीख में 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ ने प्रक्षेपास्त्र रोधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। आज की तारीख 26 मई को स्विट्जरलैंड में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के सम्मान में विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। अब बात की जाए राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर। तो श्रोताओं, आज की तारीख में 1999 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक साथ 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। ये उपग्रह थे भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के। आज की तारीख 1957 में प्रथम सुगम संगीत समारोह का आयोजन आकाशवाणी द्वारा किया गया था और उसके बाद श्रोताओं आकाशवाणी द्वारा अखिल भारतीय सुगम संगीत का कार्यक्रम, अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चलता रहा। 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और ईरान के नादिर शाह के बीच संधि के अनुसार अफगानिस्तान भारत से आज की तारीख में अलग हुआ था। 2014 में

ने आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल की शपथ उन्होंने आज की तारीख में ली थी। और श्रोताओं, इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर आज की बात कर ली जाए तो आज जो है क्वाड समूह के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में होनी है और ये बैठक जो है क्वाड समूह देशों के विदेश मंत्री सभी भारत आए हुए हैं और इसका जो नतीजा जो होगा वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदेमंद ही साबित होगा, ऐसा हम सोचते हैं। और अब बात कर ली जाए आज के प्लेऑफ मैचेस की, जो कि क्रिकेट प्रेमियों को हमारे इंतजार होगा आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ मैचेस की। अब हम बात करते हैं तो चलिए हम बता दें कि आज के प्लेऑफ मैचेस आईपीएल के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच ये मैच है जिसे आप शाम 7:30 से दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी रनिंग कमेंट्री आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर भी सुनी जा सकती है। तो श्रोताओं, ये थी इतिहास के पन्नों की बातें, हमने इतिहास की बातें भी कर ली और आज की बात भी कर ली और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में जो अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं उसका अंदाज कुछ ऐसा है। तेरी मोहब्बत लाख छुपाई जमाने से मैंने, तेरी मोहब्बत लाख छुपाई जमाने से मैंने, मगर आंखों में तेरे अक्स को छुपा ना सका। अब तेरी शिकायत करें भी तो किससे करें, अब तेरी शिकायत करें भी तो किससे करें, हर शख्स को कहा था मैंने तुमसे बेहतर कोई नहीं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं रोजगार सूचना। आज की रोजगार सूचना इस प्रकार से है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के का एक संयुक्त उपक्रम है, मेट्रो रेल डिपो भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा बताए जा रहे रिक्त पदों के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण और पात्रता संबंधी शर्तें इस प्रकार से हैं। पद नाम है जनरल मैनेजर, जो कि सिविल और अंडरग्राउंड दो ट्रेड्स के लिए होगा। रिक्त पद की संख्या है एक। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी परीक्षा उत्तीर्ण हो, जो कि सिविल इंजीनियरिंग विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इस पद के लिए वेतनमान है 1,20,000 से 2,80,000 रुपये प्रतिमाह। हम यहाँ ये बता दें कि बताए जा रहे जो पद हैं वो प्रतिनियुक्ति के आधार पर और नियमित आधार पर भी भरे जाने हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस पद के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु वेबसाइट का पता है www.mpmetrorail.com। उम्मीदवार इस रोजगार सूचना के अन्य नियम और शर्तों हेतु दिनांक 21 मई 2026 के स्थानीय समाचार पत्रों का अवलोकन कर सकते हैं या विभाग की अधिकृत वेबसाइट www.mpmetrorail.com पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है 21 जून 2026। श्रोताओं, ये थी रोजगार सूचना। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का FM चैनल 101.3 MHz पर। बने रहिए हमारे साथ। ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
1: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
0: और ग्रीन एनर्जी पाएं
1: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
0: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस,
1: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
0: और चले आएं ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर, काली पुतली चौक, मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 8770854830,
0: 7581938175।

कोई जुबा नहीं तेरे पायल की मगर, कोई जुबा नहीं तेरे पायल की मगर, जब तेरी पायल छनकती है तो बेहिसाब मोहब्बत बयां करती है।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं आज की कृषि सलाह। किसान साथियों, मई का दूसरा पखवाड़ा चल रहा है और ऐसे समय में जबकि भीषण गर्मी है, सबसे अच्छी बात यह होगी कि खरीफ की फसलों की तैयारी हेतु आप खेत की जुताई इस वक्त कर सकते हैं। और जो किसान साथी खरीफ की फसल में धान लगाना चाहते हैं, अमूमन धान ही ज़्यादातर हमारे ज़िले में लगाई जाती है, तो खेत की गहरी जुताई करने के बाद कुछ समय खेत को खुला छोड़ दें। इस गर्मी की जो धूप है उसमें इसका फ़ायदा मिलता है खेत को। और कुछ किसान साथियों ने गोबर की खाद जो है वो डालने का सोचा है, तो बिल्कुल ये समय उपयुक्त है। यदि आपके पास समय है तो सुबह के समय में गोबर की खाद खेतों में डाली जा सकती है इस समय में। इसके अलावा जायद की सभी फसलों में पौध संरक्षण का कार्य इस वक्त किया जा सकता है। धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत की तैयारी जो हमने आपको बताई कि गहरी जुताई करें और उसके बाद कुछ दिनों के लिए खेत को खुला छोड़कर गोबर की खाद डाली जा सकती है। इसके अलावा किसान साथियों, जायद मूंग और उड़द यदि आपके खेत में लगी है तो

0: समय पर पकी फलियों की तुड़ाई करें ताकि फलियों के चटकने से नुकसान आपको ना हो। हम अपने किसान साथियों को बता दें कि यही समय है जब आप भू एवं जल संरक्षण हेतु मेड़बंदी और अन्य कार्य अपने खेत में कर सकते हैं। उद्यानिकी फसलों के लिए हम अपने किसान साथियों को ये सलाह देंगे कि फलदार पौधों में आवश्यकतानुसार सिंचाई समय समय पर करने का वक्त रहता है, सुबह और शाम का समय उपयुक्त है। छोटे फलदार पौधों को लू से बचाने के लिए टटियां बांधी जा सकती हैं। बेर में कटाई छटाई करें और बडिंग द्वारा बेर के पौधे तैयार करने का ये अनुकूल समय है। ये थी आज की उपयोगी कृषि सलाह।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का लोकप्रिय एफएम चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, आज विनय श्रीवास्तव के साथ।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: चलिए श्रोताओ, इसी बात के साथ कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं कि इस भीषण गर्मी के मौसम में अनावश्यक दौड़ धूप से बचें, योजना बनाकर कार्य करें, बहुत जरूरी नहीं है तो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। नौतपा प्रारंभ हो चुका है, कार्य की प्राथमिकता तय करें। इस गर्मी के मौसम में कच्चे आम का पना, पेज, पके आम का जूस, ककड़ी, तरबूज, इन सब चीजों का मजा लीजिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। स्वीकारे मेरा नमस्कार। ये था आज का कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, प्रस्तुति कुमार विक्रम सिंह की थी।
1: नमस्कार बालाघाट।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। सुबह के 8 बज रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन समाचार प्रभात, जिसका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती

0: टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।

0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहाँ वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी

0: प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और श्रोताओं आप हमें सुन रहे हैं FM बैंड 101.3 MHz पर, इसके साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें सुन सकते हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

गाई खान साहब रईस खान, इसी कंपोज़र थे फिल्म के लिए। फिर बाद में ये स्टेज पर इसकी शक्ल निकली और बहुत पॉपुलर हुई।

मेहंदी हसन के स्वर में कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना ये गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं मेहंदी हसन के ही गाए इस गीत से।

वहां जी पेश कर रहा हूं, वही निकाल रहा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती टाइम मैं ले रहा हूं। क्या है

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये प्रसारण है आकाशवाणी बालाघाट का। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक पत्रिका कार्यक्रम सबरंग। आज इस कार्यक्रम के साथ हैं हमारी सहयोगी माधुरी कचरे।

0: समसामयिक विषयों पर केंद्रित पत्रिका कार्यक्रम लेकर आपके साथ हूं मैं माधुरी कटरे ब्रह्म। सभी सुनने वालों को नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में हम बात करेंगे 31 मई को मनाए जाने वाले तंबाकू निषेध दिवस के विषय में, जानेंगे तंबाकू से होने वाले रोग, साथ ही हम बात करेंगे आत्मरक्षा का गुर सिखाने वाली जयश्री सोनवाने से और चर्चा होगी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के विषय में। सिलसिलेवार आइए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम क्या हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर बीएम शरणागत सर के पास, जो एमडी हैं, और अब हम इनसे इस विषय पर जानकारी हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। और ये आज का एक बड़ा ज्वलंत टॉपिक आपने एक मैसेज देने के लिए लिया है, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में है, जो 31 मई को मनाया जाता है। मित्रों, चूंकि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और उस अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अभी से सतर्क हो जाएं तो आने वाली काफ़ी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, 1987 में डब्ल्यू

0: एच ने एक कॉन्फ्रेंस कराई और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये देखा कि विश्व के अनेक देश में स्पेशली भारतवर्ष में इसका प्रकोप बहुत बढ़ते जा रहा है, तंबाकू खाने का सेवन बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि 31 मई को दिन ऐसा चुना जाए जिसमें हम विश्व निषेध तंबाकू दिवस मनाएं और इसकी यहाँ पे गठन किया गया। आपको ये आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा जो तंबाकू का सेवन या जो स्मोकिंग करते हैं वो है कोलकाता, और सबसे ज़्यादा जो बीड़ी पीते हैं वो प्रदेश है उत्तराखंड। और आजकल ये माना जा रहा है कि पहले 80% जेंट्स लेते थे, लेकिन अब जेंट्स का लेवल के साथ साथ महिलाओं का लेवल भी बढ़ते जा रहा है, जो 23.5% माना जाता है।
1: डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो तंबाकू में ऐसा कौन सा रसायन होता है या जिससे जो शरीर को नुकसान पहुंचता है, ये मैकेनिज्म कैसा होता है?
0: तंबाकू एक पौधा है जिसको बॉटनिकल नेम जिसका निकोटियाना टैबेकम है, इन नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियाँ जो रहती है बहुत विषैली रहती हैं। अगर पत्तियों को हम चबाकर खाएं, च्यू करें, तो उससे एक रसायन निकलता है, या पत्तियों को अगर हम जलाकर खाएं, जो सिगरेट के रूप में, सिगार के रूप में, हुक्का के रूप में या बीड़ी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, उससे 7,000 प्रकार के रसायन निकलते हैं धुएं में। इसलिए कहा जाता है कि जो बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है उसको तो नुकसान होता ही है, पर साथ में उसके साथ में जो खड़ा वाला साथी है उसको भी उतना ही नुकसान होता है। इसमें स्पेशली जो हानिकारक तत्व निकलते हैं, रसायन निकलते हैं धुएं के रूप में, वो है हाइड्रोजन साइनाइड जो बहुत खतरनाक माना जाता है, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा है अमोनिया। ये चीज़ें बहुत घातक होती है, कैंसर को जनित करती है। इसलिए आपने देखा होगा पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि सिगरेट इज इंजरियस फॉर द हेल्थ, वही कैंसर का एक जनक माना जाता है।
1: साल 2026 की थीम की अगर हम बात करें तो इसका क्या उद्देश्य है? जैसा कि आपने अध्ययन में पाया होगा, मुख्य रूप से आपने भी चर्चा में भी कहा कि पैकेट पर लिखा होता है कि ये इंजूरियस है या इससे नुकसान पहुंचता है, इस थीम के माध्यम से किस तरह से सरकार टोबैको फ्री करने की कोशिश कर रही है देश को?
0: सन 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक निर्णय लिया है और उन्होंने एक स्पेशल लाइन बनाई है हेल्पलाइन, जिसको हम नेशनल टोबैको क्विट लाइन कहते हैं, या हिंदी में कहा जाए तो भारत सरकार की राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1800112356। इसके तहत उद्देश्य ये रखा गया है कि जितने भी कंपनियां जो व्यसन के रूप में स्मोकिंग को प्रमोट कर रही है उनका पर्दाफाश करना। जैसे कि हम टीवी पे देखते हैं, ये इसका बड़ा प्रोपगंडा करते हैं, पर इससे पब्लिक की मानसिकता पे उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये कंपनियां प्रमोशन के लिए किस हद तक जा सकती है उसके लिए आप खुद देख रहे हैं टीवी पे। तो मेरा ये कहना है कि इसका उद्देश्य साल का जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो उत्पाद कर रही है उसको प्रोत्साहन को रोकने के लिए गवर्नमेंट सरकार का ये स्टेप उठाया जा रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 5 प्रकार के 5A पॉइंट दिए हैं। पहला ए है आस्क, उनसे पूछे कि आप क्या लेते हैं। दूसरा ए है एडवाइस, उनको सलाह दीजिए कि आप ऐसा मत करिए। तीसरा ए है असेसमेंट, कि आप आकलन करिए, उसका डिटर्मिनेशन करिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। चौथा ये असिस्ट, उनको दूर करने के लिए सहायता के पॉइंट बताएं। और लास्ट में ए फॉर अर्जमेंट, ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वो उनकी लत से या उसके नशे से बच सकें।
1: हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि हर आयु वर्ग के जो लोग हैं, विशेष तौर पर युवाओं में तंबाकू के सेवन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, चाहे हम उसे सिगरेट के रूप में लें या गुटखे के रूप में लें। ये कितना समाज को नुकसान पहुंचा रहा है और शरीर के किन किन अंगों पर ये जो तंबाकू है ये प्रभाव डालती है?
0: जैसे भौगोलिक चीज़ों में देखा जाए तो जो टर्निंग एज रहती है बच्चों की वो 14 से 15 वर्ष की रहती है, और इस वर्ष में अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो नशे, स्पेशली स्मोकिंग करना, गुटखा खाना, पान पराग, पान मसाला, मानिक चंद, जिस प्रकार के ट्रेड नेम्स मार्केट में चलते हैं, उसे बचा जा सकता है। ये बचाने का तात्पर्य यह है कि ये एक प्रकार की लत या एक ऐसी मानसिकता को विकृत कर देती है जो से छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर इस एज ग्रुप में, स्पेशली यंग ग्रुप के बच्चों को समझा जाए कि इस चीज़ नुकसान करती है, तो हम उससे बचा सकते हैं। जैसे आपने पहले सुना होगा कि उड़ता पंजाब, ये सबसे पहले जो ज़्यादा हिंदुस्तान में इसका जो नशा का प्रचलन पाया गया था पंजाब में पाया गया था, जो अब काफ़ी कंट्रोल में है। तो इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट सलाह दे और हम लोग अवेयर हो जाएं, तो हम सोचते हैं कि इस लत के छोड़ने के फलस्वरूप हम इस आंदोलन में उनका सही रोल अदा कर सकते हैं, ताकि उनको नशा मुक्त किया जा सके।
1: जी, शरीर में निकोटिन किस तरह नुकसान पहुँचा?

0: आता है और किन किन अंगों को खासकर प्रभावित करता है?
1: निकोटीन बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। ये हार्ट की नलियों को सिकुड़ता है, जिसके कारण हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आजकल युवाओं में हार्ट अटैक जो चांसेस आते हैं उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण कारण माना गया है। दूसरा, ये शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। जैसे मुंह में जाने के बाद में ये टंग का कैंसर, जबड़े का कैंसर, मुंह की जो वाल्स रहती है जो सफ़ेद हो जाती है, जिसको ल्यूकोप्रिया या सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं या ओरल कैंसर कहते हैं, उसमें परिणत होती है। और नीचे जाया जाए तो गले का कैंसर, श्वास की नली का कैंसर, पेट में पैंक्रियास का कैंसर और ब्लेडर कैंसर में ज़्यादा ये पाया जाता है। महिलाओं में जो इसका सेवन करते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर और कार्सिनोसरिक्स भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह फेफड़े का कैंसर। जितने रसायन रहते हैं वो फेफड़े में जमा होते हैं और फलस्वरूप फेफड़े का कैंसर को 99% रूप से ये हानिकारक रूप में माने जाते हैं और उसका जनित कारण माने जाते हैं।
0: जी, मतलब ये जो तंबाकू है वो शरीर के लगभग सभी हिस्सों को प्रभावित कर रही है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे मिथक भी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो ये अक्सर कहते पाए जाते हैं कि यदि हम तंबाकू नहीं खाएंगे तो हमारा डाइजेशन नहीं होता है या हमें नींद नहीं आती, तमाम तरह के उनके पास बहाने होते हैं, तो ये मेडिकली कितने सच हैं?
1: बिल्कुल सही बात है। आदमी का शरीर जो है या उसका जो माइंड है वो एक किसी हैबिट से बना रहता है। अगर एक बार लत लग जाए तो वो लत को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें एक एडिक्शन जो है वो तंबाकू का खाना है। और तंबाकू खाने के बाद में जो ब्रेन की सेल्स रहती है वो इस प्रकार से ऑटोमेटेड सेट हो जाती है कि जब तक जिस पर्टिकुलर टाइम पर अगर वो नशा ना मिले, तंबाकू का सेवन ना करें या सिगरेट नहीं पिए, तो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। और उसको छोड़ने के लिए उसको अपने अंदर से विल पावर को दूर करना पड़ेगा और उसको इन्वायरमेंट से आगे हटाना पड़ेगा। अगर इन दो चीज़ों को तो दूर कर दिया जाए तो वो नशे की हालत से छूट सकता है।
0: यदि कोई व्यक्ति इस वक्त आपकी बात सुनकर इस समस्या को समझ रहा है और अपनी इस लत को छोड़ना चाहता है तो उसे अपनी दिनचर्या किस तरह की करनी होगी और खासकर विल पावर किस तरह का बनाना होगा?
1: मित्रों, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ होती है। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो अपने जो डेली रूटीन है उसको अच्छा करिए। और आजकल के समय में जो जिस प्रकार से हरी वरी और करी, जो आप जंक फूड खाना खा रहे हैं, जिस प्रकार से नशे में लिप्त हो रहे हैं या आप जिस प्रकार से तनाव में जी रहे हैं, उसको दूर करने के लिए हैबिट को सही करना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि हैबिट जब ठीक नहीं होती तो वो नशे के रूप में परिणत हो जाती है। और वही कारण है कि आज हम देश को नशा मुक्त करना चाहते हैं, हम देश को तंबाकू निषेध बनाना चाहते हैं।
0: सर, डिप्रेशन भी एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है और अधिकांश मामलों में ये भी देखने को मिलता है कि जो युवा वर्ग है वो नशे की किसी न किसी एक आदत का शिकार हो जाते हैं और इन सब चीज़ों में अपना सुकून ढूंढते हैं। सोशल मीडिया में यूं तो कहने को हज़ारों उनके दोस्त होते हैं, लेकिन अकेलेपन से जब वो तंग आ जाते हैं तो वो नशे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी?
1: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। जो युवा है वो तनाव में ग्रसित है और तनाव का डायरेक्ट संबंध ब्रेन से रहता है। अब ब्रेन को रेस्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो उसको बचाए, तो उसमें एक तंबाकू का सेवन करना बहुत माना जाता है, क्योंकि इसके सेवन करने से जो ब्रेन की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो शिथिल पड़ जाती है। तो वो सोचता है कि मुझे सुकून मिल रहा है, उपयोग ले रहे हैं तंबाकू का और वो हमारे नुकसानदायक हो रही है।
0: जी, आखिर में चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह सेहतमंद रहें?
1: मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा जिए, अपने खान पान में वैसे परहेज करिए। नशा जैसे शराब का हो, नशा जैसे तंबाकू का हो, सिगरेट का, स्मोकिंग का, उसे बच के रहिए। और अपने परिवार को बहुत समय दीजिए। अगर आप परिवार के साथ में रहते हैं तो आपकी ये बीमारियां अपने आप दूर हो सकती है।
0: डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हमारे साथ थे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर BM शरणागत, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाई।

0: ताकि विपरीत परिस्थिति में हम स्वयं की रक्षा कर सकें। रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर जयश्री सोनवा ने महिलाओं, युवतियों और बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं।
1: मैं श्रीमती जयश्री सोनवानी।
2: जयश्री जी, आप कराते सिखाती हैं तो अपने संगठन के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम, रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन ये विशेषतः महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है, जिसमें महिलाओं को मानसिक, शारीरिक रूप से सशक्त करना, उनका सर्वांगीण विकास करना, हर परिस्थिति में महिलाएं एक सक्षम रहे कि कोई भी विपरीत परिस्थिति जब आ जाए तो वो उस परिस्थिति से बाहर निकल जाए, अपनी रक्षा स्वयं कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। इस उद्देश्य के साथ में ये संस्था निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती आई है।
0: तो किन किन विधाओं के द्वारा आप महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश करती हैं, विशेषकर आत्मरक्षा की अगर हम बात करें?
1: बिल्कुल मैम, जैसे महिलाओं को आत्मरक्षा और उनको सशक्त करने के लिए।
0: आपका परिचय?
1: मैं श्रीमती जयश्री सोनवानी।
2: जयश्री जी, आप कराते सिखाती हैं तो अपने संगठन के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम, रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन ये विशेषतः महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है, जिसमें महिलाओं को मानसिक, शारीरिक रूप से सशक्त करना, उनका सर्वांगीण विकास करना, हर परिस्थिति में महिलाएं एक सक्षम रहे कि कोई भी विपरीत परिस्थिति जब आ जाए तो वो उस परिस्थिति से बाहर निकल जाए, अपनी रक्षा स्वयं कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। इस उद्देश्य के साथ में ये संस्था निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती आई है।
0: तो किन किन विधाओं के द्वारा आप महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश करती हैं, विशेषकर आत्मरक्षा की अगर हम बात करें?
1: बिल्कुल मैम, जैसे महिलाओं को आत्मरक्षा और उनको सशक्त करने के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण और कराटे प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे अभी ये निरंतर 4 वर्ष से चल रहा है मैम, और ये गर्मी में जैसे बच्चों की छुट्टियों के उपरांत जैसे 1 मई से लगातार अभी 31 मई तक कराटे प्रशिक्षण चला है, और जिसमें किसी भी आयु वर्ग की बालक बालिकाएं 5 वर्ष से, और महिलाओं के लिए कोई भी आयु सीमा के लिमिट नहीं है, किसी भी आयु वर्ग की महिला यहाँ पर आती है और प्रशिक्षण लेती है, और ये अभी निरंतर चल ही रहा है प्रशिक्षण।
0: जी, महिलाओं के लिए निःशुल्क और बच्चों के लिए भी निःशुल्क कराते प्रशिक्षण है, तो कराते में आपने क्या कुछ किया है और किन किन आयु वर्ग के बच्चों को कहाँ पर आप प्रशिक्षित करती हैं?
1: जी मैम, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, फर्स्ट डॉन, और ये शासकीय महारानी कन्या लक्ष्मीबाई में प्रशिक्षण चलता है शाम को 5:30 बजे से। अगर कोई भी स्कूल के बाहर के भी कोई बच्ची अगर आना चाहे तो बिल्कुल इस प्रशिक्षण में सहभागी हो सकते हैं।
0: आपने ये क्यों सोचा कि आप खुद ब्लैक बेल्ट हैं और निःशुल्क प्रशिक्षण देने की बात मन में कैसे आई?
1: मैं खुद चाहती थी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में कार्य करूं, और मैं MP पुलिस, SI वगैरह की तैयारी करते आई हूं, जो कि मेरा उसमें किसी कारणवश नहीं हो पाया, और मेरा उस पुलिस सेवा में जाने का उद्देश्य यही था कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊं, महिलाओं के साथ घटित हो रहे अपराधों के लिए मैं कुछ करना चाहती थी, और ईश्वर ने मेरे लिए शायद कुछ अलग ही प्लेटफॉर्म सोच रखा था, और मैं आज सभी महिलाओं को यहाँ कराटे आत्मरक्षा सिखाती हूँ। स्वयं मैंने तो पहले शुरुआत में मैंने खुद शादी के बाद में कराटे में प्रशिक्षण लिया 2016-17 से, जबकि मेरा SI में नहीं हुआ सिलेक्शन। उसके बाद में मैंने जब फिजिकल की तैयारी कर रही थी उसी दौरान खुद कराटे सीखा, धीरे धीरे ब्लैक बेल्ट हुई, और उसके बाद में मैं शुरुआत अपने घर के छत से किया, और जब मुझे रिस्पांस महिलाओं का, बच्चियों का अच्छा लगा तो उसके बाद से ही मैंने सोचा कि मुझे रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है और इस क्षेत्र में मैं अच्छा कर सकती हूँ। रक्षिका एक महिलाओं की रक्षा करने वाली शक्ति, उस नाम से रक्षिका नाम दिया और संस्था का गठन किया, और उसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और हर तरीके से महिला सशक्त बने, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त बने, जिसके लिए संस्था कराटे आत्मरक्षा तो सिखाती है, निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण, साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम, मार्गदर्शन। बच्चियाँ किसी भी परिस्थिति में हो, अगर टीनएजर्स हैं, कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, उनको उस एज में जो परेशानी आती है, जो बच्चियाँ शेयर नहीं कर पाती, कई बार ये होता है कि उस जिस परिस्थिति से गुजरती है तो वो अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन के साथ में शेयर नहीं कर पाती, तो रक्षिका एक फैमिली, एक फ्रेंड की तरह एक काउंसलिंग भी करती है, साथ में उनकी हर तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करती है कि बच्चियाँ निर्भीक होके बिना हेजिटेशन के हमसे कुछ मदद ले पाए और हम इस क्षेत्र में उनकी कुछ मदद कर पाए। तो एक आपसी समन्वय और एक सहेली की तरह हम उनसे काउंसलिंग देते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण के साथ ही उनको एक थ्योरी नॉलेज भी देते हैं कि अगर जो बच्चियाँ आत्मरक्षा कराटे नहीं भी सीखे हैं, पर अगर आप किसी सफर में हैं या अगर आप कहीं मार्केट में

0: है आपके साथ में कोई अगर ऐसी परिस्थितियां सामने आती है, कोई आपका किडनैपिंग कर ले, कुछ ऐसी गलत तरीके से टच करे, तब आपको किस नंबर पे आपको कॉल करना चाहिए? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, पुलिस नंबर, या फिर परिवार सहायता? मतलब ये वैसे बहुत सारी जो थ्योरी नॉलेज होती है हम देने का यहाँ पर प्रयास करते हैं अपने क्लास में।
1: जी जयश्री जी, बहुत सारे श्रोता इस वक्त आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, किस तरह वो आपसे जुड़ें और आप उन्हें अपने विशेष तौर पर आत्मरक्षा से संबंधित क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी?
0: बिल्कुल मैम, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप कराटे क्लास आए तभी आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। कुछ सावधानियां, कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर हम यूज़ करें, और हर परिस्थितियों को महिलाएं अगर, विशेषतः अगर माताएं बहनें अगर खुद जागरूक हो, वो भी कुछ ऐसा सोचे अपने बच्चियों के बारे में। कभी कभी जैसे हर दिन क्लास आना संभव नहीं हो पाता हर महिलाओं के लिए, पर अगर वो किसी दिन भी क्लास में आती, अगर कुछ सुरक्षा के टिप्स अगर वो मुझसे लेती है, तो निश्चित ही वो अपने बच्चियों को बता सकते हैं, वो खुद दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपनी रक्षा तो करेंगे ही। इसके लिए कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ, कुछ अवेयरनेस है कि हम उनको फॉलो करके कुछ हम उससे बाहर निकल सकते हैं। पर जैसे महिलाएं अपने पर्स में कुछ ऐसे चिली स्प्रे हो गया, ऐसे कुछ मिर्ची पाउडर, जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे पास में खुद हमारे टूल्स होते हैं, हम जो वेयर करते हैं, हमारी गाड़ी की चाबी हो गई, मोबाइल कैसे यूज़ करना है, किसी ने हमें अगर अटैक किया है तो हमें कैसे बचाव करना है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिससे हम अपना मोबाइल भी अगर स्विच ऑफ है, अपना मोबाइल ऑफ हो गया है, तो उस परिस्थिति में कैसे बाहर निकले। तो और कुछ हमें टूल्स है, सेफ्टी टूल्स हम अपने पर्स में रख सकते महिलाएं, बट हमको ये पता होना चाहिए कि हम उन चीज़ों का यूज़ कैसे करें, हम सामने वाले को कैसे पंच या फिर कैसे अटैक करें जहाँ कुछ देर के लिए सामने वाला बेहोश हो जाए, हम वहाँ से भाग पाए, खुद का बचाव कैसे कर पाए। तो कुछ छोटी छोटी बारीकी सी चीज़ें हैं, थोड़ा हम अगर उन्हें क्लिक करें, हमें अगर पता हो कि बॉडी पार्ट्स में कौन से सेंसिटिव पार्ट्स हैं जहाँ हम थोड़ी देर के लिए भी अटैक करें, तो हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं और परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: हमने बातचीत की जयश्री सोनवाने जी से, और अब कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के विषय में।
1: हमारे साथ हैं बालाघाट के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सूर्यप्रकाश उके जी, जो हमें बता रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के विषय में। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, और इस योजना का क्या उद्देश्य है, ये योजना है क्या, ये जानना चाहेंगे।
3: मैं सूर्यप्रकाश उके, मुख्य नगरपालिका अधिकारी बालाघाट। पीएम स्वनिधि योजना, जिसके अंतर्गत पथ विक्रेताओं को एक लोन दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 10,000 1.0 में 10,000, 20,000 और 50,000 राशि दी जाती थी। अभी नया लॉन्च हुआ है जिसमें 2.0 है, जिसके अंतर्गत हितग्राहियों को 15,000, 25,000 और 50,000 की राशि दी जाए। जिसका सिविल अच्छा होता है, यानी जैसे जो 15,000 का लोन पटा दिया जाता है, तो उसे दूसरे 25,000 का दिया जाता है, 25,000 पटाने के बाद 50,000 की एलिजिबल होकर उसको दिया जाता है। और जिसमें अभी हमारे यहाँ 4,000 लोगों को, हितग्राहियों को बालाघाट में दिया जा चुका है।
1: सूर्यप्रकाश जी, जैसा कि इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना, तो प्रधानमंत्री जी का ये मंशा थी उनकी, ये कि जो कोविड के दौरान आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो पथ विक्रेता के रूप में जाने जाते हैं, रेहड़ियाँ लगाते हैं, आर्थिक रूप से जिन्हें ज़रूरत है इस तरह के लोन की, ये उनकी मंशा थी कि उनको दिया जाए। तो आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला है इस योजना का जब से क्रियान्वयन हुआ है?
3: जिसके अंतर्गत गरीब तबके के लोगों की, ये लोग एक आत्मनिर्भर बन चुके हैं, और उनका एक अभी इनका जो जीविका है काफ़ी सुधार आया है, और वो लोग बहुत खुश हैं कि अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं।
1: कौन कौन इसमें हितग्राही बन सकता है?
3: जिसमें कुछ पात्रता रखते हैं, जो जैसे जो काम करते हैं सब्जी भाजी वाली दुकान वाले, जो स्ट्रीट वेंडर जो है अपने पथ विक्रेता, इन लोग को लाभ दिया जा रहा है।
1: तो इनका आय संबंधी कुछ वेरिफिकेशन होता है, या कोई भी पथ विक्रेता जो है वो आवेदन कर सकता है?
3: हाँ, कोई भी पथ विक्रेता इसमें आवेदन कर सकता है। एलिजिबल के लिए वो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल का लिंक, मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए, और पैन कार्ड होना चाहिए।
1: तो इस वक्त तो जो आपको श्रोता हमारे सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और जो सड़कों के किनारे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लें?
3: मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी अगर अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, जो भी लाभ अगर ले चुके हैं और

0: जिसने 15 का ले चुका है तो 25,000 के लिए आवेदन करें, और 25,000 वाले 50,000 के लिए, इसके लिए आप नगर पालिका परिषद बालाघाट में एनुलम शाखा में आके अपना अपना आवेदन प्रस्तुत करें और लाभ लें।
1: हमारे साथ थे सीएमओ नगर पालिका बालाघाट सूर्य प्रकाश जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के विषय में। ये था आज का अंक। आपके साथ थी मैं माधुरी कटरे ब्रह्म। अब दीजिए इजाजत, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक पत्रिका कार्यक्रम सबरंग। सबरंग कार्यक्रम को लेकर आपके साथ थी हमारी सहयोगी माधुरी कटरे। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिनका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

गजनी फिल्म से आप सुन रहे थे ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ ये बेहतरीन म्यूजिक। आइए अगला गाना सुनते हैं उन्हीं की कंपोजिशन में, युवराज फिल्म से, बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की आवाज़ों में गुलजार के बोल।

0: दर्शन फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनवाएंगे हम आपको टशन फिल्म से वो गाना, लेकिन बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतजार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतजार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतजार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं तुम्हारी सुलूफ। इस फिल्म से रोंकिनी गुप्ता की आवाज में शांतनु घाटक का म्यूजिक और लिरिक्स।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं जब हैरी मेट सेजल। इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: यस, हु इज इट?
2: डॉन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार।
4: इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, इनु वेख जे कुड़िया तो कहंदी ओ
3: मांडा। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

उनके पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्र

साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को माँ हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

शिखर को ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

और फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया

जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

0: मोहब्बत बुरी बीमारी।
1: कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

और फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और श्रोताओं आप हमें सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पत्रिका कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी भोपाल से। कुछ पलों का इंतज़ार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
1: प्रस्तुत है धार से लेके चिट्ठी, आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल्य धार जिले में नौतपे की तपिश होने से आमजन हलाकान हैं। भीषण गर्मी के चलते जिले में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वहीं किसान आगामी खरीफ फसल के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। जिले में इस साल 5,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का और शेष रकबे में मूंग, उड़द, मूंगफली आदि फसलें शामिल हैं। धार जिले में भी वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन पूर्व जिले में 10 दिवसीय कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत तैयार किए गए विशेष कृषि रथ को केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर तथा कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए तैयार किए गए 13 कृषि रथ प्रतिदिन 4 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रगति पर है। 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई खरीदी 28 मई तक चलेगी। जिले में इस साल 250 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से अब तक 229 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी 25,435 किसानों से की जा चुकी है। जिले में इस साल 44,913 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें से 30,510 किसानों को स्लॉट बुक हुए हैं। धार जिले में जनगणना 2027 का पहले चरण का कार्य चल रहा है। 31 मई तक चलने वाले पहले चरण में प्रगणकों ने समय से पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जिले में 7,17,530 मकान होने के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। काम पूरा होने के बाद क्रॉस चेकिंग का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। धार जिले में आमजनों की सुविधा और आधार सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से धार के प्रधान डाकघर सहित विभिन्न डाकघरों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों को नवीन आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल लिंकिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा दिए गए फैसले के बाद से सभी ओर उत्साह का माहौल है। भोजशाला के पट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार के ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। उन्होंने माँ वाग्देवी की पूजा अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि धार में माता सरस्वती लोक विकसित किया जाएगा। राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, धार विधायक नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। धार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जिले भर में जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर जल स्रोतों के पूजन और गंगा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार जिला इस अभियान में प्रदेश में 6वें स्थान पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। धार जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर स्वच्छता बनाए रखने का भी संकल्प दिलाया गया। धार के प्रसिद्ध शिल्पकार और संगीतज्ञ रघुनाथ राव कृष्णराव फड़के कला अवदान को समर्पित 3 दिवसीय 11वां पद्मश्री फड़के संगीत समारोह गतिनो जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। गायन, वादन और नृत्य की संगीत त्रिवेणी का संगम माने जाने वाले फड़के संगीत समारोह में शास्त्रीय नृत्य, गायन और वादन की नई विधाओं से

संगीत प्रेमी परिचित हुए। श्रीलंका नृत्य दल की प्रमुख डॉक्टर अंजलि मिश्रा को इस साल पद्मश्री फड़के कला सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं अंतिम दिन कोलकाता की ख्याल गायिका श्रीमती पियाली चटर्जी ने गीत और भजन प्रस्तुत किए। धार जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम कर रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी बालाघाट का। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम रोग फिल्म का गाना लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम रोग फिल्म का यह गीत आपने अभी सुना। इस गीत को लिखा था संतोष आनंद ने और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अगले क्रम में हम आपको सुनवाएंगे राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गाना सुरेश वाडकर का गाया हुआ। फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। अब हम हाजिर हैं अपने वादे के मुताबिक राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत आपको सुनवाने के लिए। आवाज़ सुरेश वाटकर और साथियों की हैं। रविंद्र जैन का लिखा हुआ और संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का एफएम चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए हमारे साथ।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
5: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फूल और कांटे। इस फिल्म का गाना अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया हुआ। नदीम श्रवण का संगीत है, रानी मलिक ने इस गीत को लिखा है। आइए सुने फूल और कांटे फिल्म का ये गीत।

फूल और कांटे। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी अलका याग्निक, कुमार सानू की। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं लुटेरे फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। आनंद मिलिंद ने इस गीत को लिखा और माफ़ कीजिएगा, इसे दोबारा सुन लीजिए, आनंद मिलिंद का संगीत आप इस गीत में सुनेंगे, धर्मेश दर्शन ने इस गीत को लिखा है। आइए सुने लुटेरे फिल्म का ये गाना।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
2: जी,
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
3: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ

लुटेरे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी बालाघाट का। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है एन

0: समय बिताते हैं
1: जी।
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं
1: जी। दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी।
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा
1: जी।
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
1: जी।
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
0: जी।
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें
1: जी।
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है
1: जी। बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, Have you ever visited a zoo?
3: A zoo?
2: Yes, a zoo.
3: Oh, yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh, wow. So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.

0: Tiger. This was Polar Bear. And this was Skunk. And this was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
5: बिल्कुल ठीक है।
4: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की जय! वीर जोरावर की जय! जय जेरापुर, जय भारत!
7: जय जेरापुर, जय भारत!
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
8: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
8: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
9: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
4: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
9: जी।
4: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
9: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
4: बिल्कुल
9: आपकी

0: सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह खास
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी,
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
1: जी,
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
5: ए सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
7: बिल्कुल।
5: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
5: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: Johnny!
1: Now, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो।
0: ये क्या है?
1: You are under arrest.
0: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
1: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: हाँ। छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
1: शाबाश, शाबाश, सारालजन, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
2: हुजूर।
0: अच्छा।

0: तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
1: जाओ, चलो इसको, चलो
2: मुझे, छोड़ो मुझे।
3: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
4: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
5: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
0: अप्पा ये नहीं हो सकता।
5: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
0: ये नामुमकिन है।
5: Why?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
5: Yeah.
0: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
5: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
5: Actually, you are a fool.
3: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
4: काला पानी की सजा?
3: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
4: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
3: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
4: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
6: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड पर ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 11 बजे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा।

0: मुंबई के कार्यक्रम जिनका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी मुंबई से।
1: लीजिए प्रस्तुत है आज के इस प्रोग्राम रंग तरंग का पहला गीत।

दुर्गा माँ इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजों में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा था और उन्हीं का संगीत। रंग तरंग में ये अगली पेशकश। जॉगर्स पार्क फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी। जंजीर फिल्म से ये गीत सुनिए।

जमाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या

नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

हाल क्या है जनाब जी। हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा। फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अ वेडनेसडे फिल्म से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजॉय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: चित्रा सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस गजल में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में

0: ने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ

0: या दें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज वो गीत जिनमें इंतजार, याद, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है।

आशा भोसले, भूपेंद्र की आवाजों में एतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा, जगजीत सिंह की आवाज में।

होठों सो छिलो तुम मेरा गीत अमर कर दो, प्रेम गीत फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह की आवाज में इंदिवर ने इसे लिखा था।

आपकी कसम, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यह है विविध भारती, सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुरीला सफर। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफी सारे शब्द, काफी सारे गीत आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है, जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है। तुम पास हो या ना हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात। एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है। वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है। सपना बनकर तुम ही तो आए थे दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में। ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना।

मुझको ये जाने वफा तुम याद आए, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायनी ने इसे लिखा और रवि का संगीत था, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप सब ने एक दूसरे को एक दूसरे का अभिवादन किया है, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और उसके अलावा एक श्रोता हमें लिखते हैं, इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहाँ प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां है। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेमी युगल दिल को सहला देते हैं, तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कंपकपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती, बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सार जरूर अब तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की तीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है, जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ, बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी टीस उभरती है। ऐसे में जब खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है तो सिर्फ हवा नहीं होती, वो सिर्फ आती है पुरानी यादों का कारवां लेकर, अधूरे सपने और थोड़ा

सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफर में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आजाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हम सफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं, और कुछ नया चीज़ देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज़ दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो इस सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी ये एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियाँ पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल, और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग के ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय, कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है, और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूं।

एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान रखना, ध्यान करना बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफ़ी लंबा मैसेजेस और काफ़ी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए मेंटली, इमोशनली। तो ज़रूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहाँ आप तक पहुँचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसे ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है। प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है। बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहां आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में जो गीत हमने आपको सुनवाया उसमें जो नजर आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर। जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए, और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके

केक हो जाएं हम। तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो जरूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन है, ये जरूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था, और करीबन 2000 किलोमीटर दूर।

धर्म पत्नी से बिछड़ना पड़ा था, उस वक्त उन्हें ये इबारत की जो सब बातें आज है वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मजा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आंखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आंखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में खयाम का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा, ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं। साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो, इंट्रो म्यूजिक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूं मैं अक्सर। वहां चीड़ के ऊंचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियां साए साए करती है, वो आवाज सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता, और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं, खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे। और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है, मुझे बताएं।

रात कल ये ख्वाब में आई, और फिल्म का नाम था बुड्ढा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर यह फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना? साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफ़र, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में।

आपके साथ और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी। जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है, वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आज की त्रिवेणी में चलने की बातें। साथियों, चलती हुई हवा बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ चलना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है और सक्रियता की पहचान है।
1: बाजू।

0: हम।
1: चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वहीं जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन अबाध चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी जिंदगी चलती रहती है।

0: चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता, कई बार मन ही मन हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है। मन पर काई नहीं जमने देती, बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से संवार देती है।
1: प्रादेशिक समाचार,
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी पोस्ट किया, जिसका मतलब है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के कारण वह मलिन दिखती है और ज्ञान से फिर अपने असली स्वरूप में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। वहीं दूसरे दिन नाथुला दर्रे की यात्रा के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दौरे के आखिरी दिन वे सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी, जिसके साथ सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉ. नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि इनके कार्यों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा की 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। इस परिक्रमा की शुरुआत कल गंगा दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव ने रामघाट पर पूजन कर की थी। ये परिक्रमा 23 साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ही मां क्षिप्रा के संरक्षण के लिए शुरू की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते

0: हुए श्री चौहान ने कहा,
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष मंत्रालय पूरे देश में 100 दिनों की काउंटडाउन सीरीज चला रहा है, जिसके तहत 25वें कार्यक्रम की मेजबानी खजुराहो कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव आज खजुराहो पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सांसद वीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटेरिया ने उनका स्वागत किया। अब रुख करते हैं मौसम का। इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छतरपुर के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री और नौगांव में 46.8 डिग्री पर दर्ज किया गया। प्रदेश के करीब 45 जिले हीटवेव की चपेट में हैं और मौसम विज्ञान विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई से प्री मानसून की दस्तक हो सकती है और 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद का सरकारी अवकाश 27 मई की जगह 28 मई कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे। झाबुआ के ग्राम रंभापुर के हाट बाजार में संभाग स्तरीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बिक रहे खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड सहित 5 मेडल हासिल किए हैं। खंडवा के मानधाता के आरक्षक रवि सोलंकी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब रहे महाराष्ट्र निवासी युवक की जान बचाई और आगरमालवा जिला अस्पताल में तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को, थोड़ी देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त

0: प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: Action. जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमरीका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 27वें में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त

0: और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे।

इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक

0: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में तू नहीं और सही, फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

जब जब फूल खिले, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साथ ही नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है

0: और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई हैं, फिर क्या क्या
1: हाँ ये तो बात
0: बोलेंगी
1: है।
0: है ना
1: देखिए दोपहर की जो
0: जी
1: गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी
0: जी
1: मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने लगते
0: महसूस
1: हैं।
0: करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं
1: हाँ
0: वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं
1: हाँ
0: भाई अभी
1: अरे
0: तो
1: क्या
0: क्या
1: बात करने
0: बोले
1: वाली है आज
0: क्या बोलने वाली है
1: तो बताओ आज क्या बात करने
0: तो
1: वाले हैं
0: देखिए
1: हम।
0: देखिए जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि अब हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर
1: तो
0: के
1: मुझे लग रहा है
0: जी
1: मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें ये सारी बातें कह कर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये
0: जी
1: सारे काम हो जाने चाहिए।
0: नागनी मैम देखिए नागनी जी क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती है ना ये हर घर में होती हैं।
1: जी
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी
1: हाँ
0: ऐसी चीजें
1: मेरे घर में तो
0: होंगी।
1: ये हो ही रहा है कि भी
0: अच्छा
1: हमारे घर के कुछ
0: जी
1: लोग जो बाहर घूमने गए हैं हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
0: बिल्कुल
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि
0: बिल्कुल
1: भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें क्योंकि हम घर
0: बिल्कुल
1: पर ही हैं।
0: हम घर पर है
1: हाँ
0: और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद
0: एक
1: भी आता है।
0: आनंद भी आता है और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में अभी कर लेंगे, जब आखिर के दिन बचते हैं ना
1: तब
0: दाकिनी जी
1: भाग दौड़ से
0: तब
1: काम
0: भाग
1: होता
0: दौड़
1: है।
0: मचती है कि भैया
1: बिल्कुल
0: अब कर लो नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने को
1: वही
0: मिलेगा।
1: अधूरापन मिलेगा,
0: हाँ
1: अव्यवस्था
0: तो
1: मिलेगी,
0: मतलब
1: ये
0: कहने का
1: होता
0: मतलब
1: है।
0: है खुद
1: हाँ
0: से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है
1: बिल्कुल
0: ना
1: ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे
0: जी
1: तो वो काम नहीं होता है। अब आप
0: बिल्कुल
1: खुद आगे बढ़िए और बताइए कि
0: जी।
1: आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
0: तो देखिए हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी, तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो
1: ओहो
0: इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें
1: हाँ लिखे ये
0: कि
1: कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है
0: जी
1: हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही
0: या
1: हैं।
0: आप बता सकते हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा है
1: हाँ ऐसी
0: ऐसा
1: जिंदगी में हमारे
0: जी
1: साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में ऐसा
0: हाँ
1: बहुत बार होता है हमारे
0: बिल्कुल
1: अपने घर में ही, कुछ लोग हमारे अपने भाई बहन अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ आपको पापा ने और आपने बात मान ली तो
0: हाँ
1: आप कान की कच्ची हो उसका मतलब।
0: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर
1: हाँ
0: भेजिए जिसमें आपको भी मजा आए हंसी है और हमें भी पढ़ के अच्छा
1: अच्छा
0: लगे।
1: लगे।
0: और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मंदाकिनी जी उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सुनते हैं
0: चलिए
1: ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत
0: खत
1: सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं, और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्म सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना, या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते
0: हैं। अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग। पानी चलता रहता है नलों से लगातार, आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं, या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी।

0: लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचें कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है, और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूँ, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए, आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने।
0: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए एक संदेश है, मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती ही वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं,
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं। हाँ। मम्मी तुमने एक घंटे चलाया, मैं भी चलाऊंगा। तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो

0: करेंगे ना,
1: बिल्कुल
0: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है,
1: जी
0: करके तो देखिए। कहते भी
1: बिल्कुल
0: हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं, और सुबह
1: बिल्कुल
0: उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए। तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
1: बिल्कुल
0: लग जाती है, क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते
1: बिल्कुल
0: हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि
1: बिल्कुल
0: अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो खुद शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुते रे, तो जे आच रही ते नर न घनेरे, है
1: क्या
0: ना।
1: बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात
0: क्या
1: है, बहुत
0: बात
1: सुंदर
0: है,
1: बात लिखी है।
0: बिल्कुल
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: सूरत।
1: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना नंदाकिनी जी
0: हाँ बिल्कुल
1: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना। तो ये
0: बिल्कुल
1: सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात, है ना।
0: है हाँ। और ये
1: तो
0: ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती है, क्योंकि जिस
1: जी
0: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती
1: बिल्कुल।
0: है
1: तो
0: ना।
1: चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं।
0: हाँ
1: हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत की उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
0: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉप क्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
1: जी।
0: हैं।
1: और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं। हाँ
0: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
1: जी। और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
0: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो
1: जी
0: राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉप क्लूज की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉप क्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया।
1: जी, और कंपनी की खासियत यह थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहां ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉप क्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉप क्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
0: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया, और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी। उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था, लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
1: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड्स 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास

0: विश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके

0: लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं, वो
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत
1: बिल्कुल,
0: बात
1: वो
0: है।
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते हैं,
0: विश्वास कर लेता
1: तो
0: है। तो
1: ऐसा
0: ऐसे,
1: नहीं होना
0: हाँ ऐसे
1: चाहिए।
0: कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं
1: बिल्कुल
0: कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है।
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए ना, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना।
0: सबसे बड़ी
1: कोई
0: बात,
1: दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पर
0: हाँ
1: जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं,
1: जी
0: लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो
1: जी
0: दमगम
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: आप
1: बात,
0: खुद अच्छे बने, है ना, खरा
1: बिल्कुल
0: सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब
1: बिल्कुल
0: आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि
1: बिल्कुल
0: आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है।
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई में जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: पड़ता
1: सबसे
0: है।
1: पहले तो
0: हाँ
1: इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी,
0: बिल्कुल
1: कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी
0: डिगा
1: बातों
0: नहीं
1: में
0: सकता।
1: डिगा नहीं सकते,
0: हाँ
1: जिसे कहते हैं वो
0: मतलब
1: होना
0: अपने
1: चाहिए।
0: किरदार को हमें मजबूत बनाना
1: जी
0: चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला,
1: उथल
0: इधर
1: पुथल
0: इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: नहीं, थाली
0: आपने
1: का बैंगन
0: कहा
1: जिसे कहते हैं
0: हाँ
1: वैसा नहीं होना
0: उधर
1: चाहिए
0: उसकी बात सुन ली, उधर
1: जी।
0: उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो
1: जी
0: देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि
1: बिल्कुल
0: नहीं, ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है,
1: जी
0: ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है,
1: जी
0: और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता,
1: जी
0: तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वहीं एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं, वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते हैं।

0: यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए, ऐसे
1: मतलब
0: लोग जो होते
1: गोपनीयता जो
0: हैं,
1: बातों की होती है
0: हाँ
1: दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं,
0: हटा
1: खंडित
0: देते
1: कर
0: हैं,
1: देते
0: मतलब
1: हैं।
0: दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और
1: हाँ
0: अपना अपना
1: मतलब
0: पाने के
1: निकाल
0: लिए,
1: लेते
0: मतलब
1: हैं।
0: निकालने के लिए, अपने को
1: हाँ
0: सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे को, दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं,
1: गिरा
0: तो वो
1: देते
0: चीज
1: हैं
0: नहीं होनी
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना, आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते
0: जी,
1: हैं।
0: सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजें। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
1: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुन
1: अच्छा,
0: करके।
1: क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं।

0: तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे के इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जन्माष्टमी में
1: हाँ
0: अक्सर
1: होते
0: होते
1: हैं
0: थे।
1: बिल्कुल,
0: और
1: और ये एक रोचकता
0: जी
1: बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल
0: बड़ा
1: होता है शादी विवाह में,
0: बहुत
1: जब
0: अच्छा
1: इसमें
0: माहौल
1: कि
0: होता था। और
1: छुटपुट मजाक होती
0: जी,
1: है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल
1: हाँ, बड़ी
0: लगाना नहीं
1: सादगी
0: है।
1: से वो जन्माष्टक होता
0: हाँ,
1: था, दिखावटी दिखावट
0: दिखावट
1: कहीं
0: ही
1: नहीं
0: नहीं होता।
1: होती थी।
0: मतलब अगर
1: हाँ
0: चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी
1: हाँ
0: वही
1: होते
0: लोग
1: थे।
0: होते थे।
1: हाँ
0: और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की, नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका
1: बिल्कुल,
0: भुगतान जो
1: वे
0: कहते हैं ना, वो लड़की वालों
1: लड़की
0: को
1: वाले
0: करना
1: ही करते थे।
0: पड़ता
1: हाँ बिल्कुल
0: जी।
1: सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जन्वासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी, बड़ी यादें हैं
1: बिल्कुल
0: सबकी।
1: आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ
0: जी
1: जन्माष्टमी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी कई
0: बिल्कुल, वो
1: बार।
0: अपने हिसाब से देखिए सब
1: हाँ
0: लोग अच्छा ही करते
1: बिल्कुल,
0: थे,
1: और मन से
0: मन
1: व्यवस्था
0: से
1: होती
0: करते
1: थी।
0: थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और वही एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस
1: बिल्कुल,
0: तरह के भी उनको
1: रूठने
0: सुविधाएं।
1: मनाने की जो
0: हाँ
1: बातें भी बहुत होती थी,
0: बहुत
1: कोई नाराज हो जाता था
0: होती थी
1: उसको मनाया
0: बिल्कुल।
1: जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जन्वासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए
0: तो
1: फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत
0: जी
1: जल्दी नाराज हो जाते
0: जी
1: थे ना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी, जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे, समधी, दूल्हे के पिता, फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बारातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता है, जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे, क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था, लेकिन वो गाने
1: लेकिन
0: बहुत अच्छे
1: हाँ,
0: थे,
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: जान होते थे। सही
1: एक
0: बात
1: श्रोता
0: है
1: लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है, बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं, तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से, कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था, ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग, बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत
1: कर
0: करना आते थे।
1: देते थे।
0: बिल्कुल
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था, जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे, जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं, यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी कितनी दूर है और वहाँ पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें

0: खाना,
1: हाँ
0: हर चीज प्रोवाइड कराना,
1: बिल्कुल।
0: हर पूरा एक
1: और
0: जिम्मेदारी
1: बड़ा
0: बन
1: मजा भी
0: जाती
1: आता
0: थी।
1: था कि भाई
0: हाँ
1: अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूड़ी गरम क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं
0: मिल
1: परसा
0: रहा
1: जा रहा है। तो
0: है,
1: इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे
0: चूहलबाजी भी होती
1: चूहलबाजी
0: थी।
1: टाइप की भी
0: हाँ
1: होती थी, तो बड़ा
0: बिल्कुल
1: यादगार दिन है वो। अब
0: बिल्कुल।
1: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
0: हाँ अब
1: सब,
0: वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि
1: हाँ
0: होटल भी दूर दूर होते हैं
1: बिल्कुल
0: और अभी कई चीजें बदल गई
1: बदल गई,
0: हैं। वो
1: होटल में एक साथ
0: चीजें,
1: खाना
0: शादियां
1: खा
0: भी
1: रहे हैं
0: होटल में हो गई हैं, घरों
1: जी
0: में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहां बैठकर गीत गाए जाते थे,
1: बिल्कुल,
0: पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए
1: सारे
0: जाते थे।
1: कार्यक्रम।
0: तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं
1: लेकिन मुझे
0: जिसका।
1: तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल याद
1: तो
0: आते हैं।
1: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर
0: हाँ फिर
1: बाकी
0: बात
1: संदेश
0: करते हैं।
1: लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासी में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए, तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ, तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए थे उन्हें बहुत डांट पड़ी, तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। हाँ। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी, एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए, रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौक

0: अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: और जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है, पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक अलग
0: मजा था।
1: मजा था।
0: वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ जनजान अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनियां गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही
1: जी
0: निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी जी,
0: हाँ
1: तो वो तो किसी और का बगीचा है,
0: हाँ
1: अब
0: हाँ
1: आम लगे हैं,
0: हाँ
1: अब बाराती लगे तोड़ने में, अब
0: हाँ
1: वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बारातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से
1: रोचक
0: जनवासी
1: किस्से
0: की
1: हो
0: दुनिया से
1: जाते थे।
0: जुड़े हुए हैं। बिल्कुल,
1: जी
0: आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं।
1: जी
0: और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी

0: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
1: आज फिर से ताज़ा हो गए ताज़ा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है, बांसुरी की इस
1: धन्यवाद।
0: मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है।
0: जी
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट। और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो
0: बात
1: थैंक
0: है,
1: यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट
0: अपने ही
1: फील।
0: परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से।
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बैक।
0: यहां एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी
1: पंडित अमरनाथ
0: गायक
1: जी,
0: पंडित अमरनाथ जी
1: जी
0: से
1: नहीं,
0: अलग हैं।
1: अलग हैं, बांसुरी वादक
0: जी बिल्कुल,
1: पंडित
0: बांसुरी
1: अमरनाथ जी,
0: वादक पंडित
1: बांसुरी
0: अमरनाथ जी,
1: वादक
0: जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से
1: जी
0: भी रहा। आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी। पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की,
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। अब बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है,
0: जी
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफ़ी है।
0: और इन
1: उन
0: रागों में
1: पे
0: वाद्य वृंद
1: वाद्य
0: बनाना
1: वृंद बनाना, वो भी
0: और
1: उनके
0: भी बड़ा
1: चलन के
0: काम।
1: आधार पे।
0: जी
1: अब सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ
0: ये मायने रखता
1: 80
0: है।
1: आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने हैं।
1: नगीने हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा निसा और SRGM, सारे गामा
0: अच्छा,
1: पादा,
0: दोनों नोटेशन कर देते वो।
1: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे, वो हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे।
0: जी,
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूज़िक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूज़िक में हैं, एक म्यूज़िक में नहीं है। तो
0: जी
1: मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई।
1: बुनियाद पक्की हुई एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूं कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में।
0: अच्छा। तो
1: बचपन
0: जैसे
1: ऐसा
0: कि
1: होता है ना
0: हाँ
1: कि थोड़ी सी

0: जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
1: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है
1: हाँ
0: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो तो
1: जी,
0: और भी बदमाश
1: और
0: होता
1: भी।
0: था।
1: तो आप क्या कारनामे करते थे?
0: हम लोग करते थे बचपन में काफी।
1: शर्मा रहे बता
0: हाँ, थोड़ा सा
1: रहे
0: शर्मा हो गया, बट हाँ बदमाशी करते
1: थे। बगीचों से आम चुराए, चोरी से
0: बहुत
1: फिल्में
0: चुराए,
1: देखी है।
0: बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल
1: ओहो
0: को भी थोड़ा परेशान किया है।
1: थोड़ा
0: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी।
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
1: अरे बाप रे। फिर
0: फिर पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता
1: लेकिन
0: दूं,
1: किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो
0: आपने
1: खतरनाक
0: पकड़
1: वाला किया
0: लिया,
1: होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
1: जी।
0: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने।
1: अच्छा।
0: इसको कर्मा बोलते।
1: वापस आ गया।
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूप में। हाँ,
1: जी
0: तो बदमाशी की है सर।
1: हाँ।
0: हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको
1: जी
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
1: अच्छा।
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहां के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: जी,
0: बहुत स्ट्रिक्ट
1: उस जमाना भी सख्ती का
0: थे,
1: था।
0: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं।
1: कहीं और पहुंच
0: कहीं
1: गए।
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए,
1: जी
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं बचपन में।
1: हाँ।
0: और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या
0: तो
1: हाल
0: बाप
1: होता?
0: रे, दुनिया अलग और मैं
1: कितना
0: अलग।
1: सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था,
1: जी
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूं।
1: जी ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी
0: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी।
2: रंगे पर

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो। तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से, मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो हो, गजब।
0: ही वॉज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको उसने छुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी,
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम

0: को उठाते थे वो। हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था,
1: जी जी
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के शुरू से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह,
0: तो सा सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी रा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: जागो
1: वाह
0: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है। क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की नींद,
0: चार साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न बॉटम इन दिल्ली,
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी,
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: नहीं, फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल वैसा था।
1: वाह वाह,
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, अब सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, वो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा,
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से, आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक,
1: ओहो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: शुरू का शेड्यूल थे,

0: पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे, फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज करते
0: अनुशासन से,
1: हुए,
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है। पर
1: क्या बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली, मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल।
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल।
0: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ, और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं, और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुनें आपकी पसंद
0: जी
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ,
1: जी
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का, कि
1: जी
0: ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी,
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे,
1: जी जी जी
0: इसको ऐसे बजाते हैं।
1: समझ गया।
0: देखिए, तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ,
0: आपने देखी होगी, ऐसे
1: और
0: शहनाई की
1: ये
0: तरह बजाते हैं।
1: जी जी जी
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी, इसको
1: हमेशा।
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी,
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
1: जी
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का हुल है
1: जी
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के।
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना, ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग।
1: जी
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
1: जी बिल्कुल।
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूं
1: हाँ बिल्कुल।
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का ही नोट
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल है
0: ठीक है,
1: आखिर में।
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है
0: हमने तो बचपन से देखा है,
1: जी।
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है, तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना, उसके लिए
1: आप माध्यम है
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान हैं,
1: जी।
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है

0: वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही।
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है। मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, मैं जो
1: जी
0: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो
0: इसका
1: आप
0: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता।
1: जी, तो आप
0: ये
1: अपनी
0: मैं लाया
1: कृष्णा
0: इसलिए
1: बांसुरी
0: हूँ,
1: बजाइए।
0: मैं
1: जी
0: लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
1: साथ
0: मेरे
1: चले,
0: हमारे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा।
1: क्या प्यारी
0: हाँ,
1: बात है।
0: ये मेरे फ्लूट किट में रहता है।
1: जी जी
0: अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है।
1: जी
0: अब ये

0: क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब
1: जी
0: हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: है
0: देखना पड़ता है।
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ
0: दादाजी के साथ
1: हाँ
0: राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ।
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते
0: मैं
1: हैं
0: फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।
0: आपको।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए?
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी जी जी
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है,

0: वाह वाह वाह वाह, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत कमाल का किया है आपने। ये गाना सुनते हैं।
1: पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।

0: फारस जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी
1: जी।
0: एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
0: शिशु
1: रहता
0: होता
1: है,
0: है जब
1: शिशु
0: वो।
1: होता है वो। तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा। अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी जी जी
1: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे,
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक गजब।
1: वो ये आशीर्वाद है।
0: जी जी जी
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या उनके सवाल
0: पीने
1: भी
0: जाई
1: जी।
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी,
1: उस वक्त। म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं। मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर के में मिठाई। तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर।
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक वर्मा
0: जी जी
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
0: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना
0: जी,
1: तो तब का सुना हुआ है।
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वो भी मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूं,

0: कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक वो,
1: हुलिया इरे कन्हाई,
0: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
1: जी
0: वैसा था। तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
0: हाँ,
1: फिल्म
0: रजिया
1: का गाना,
0: सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल
0: हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम,
1: जी
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है,
0: एंड आई वॉज दी बेस्ट प्लेयर
1: अरे
0: इन द
1: वाह,
0: टीम।
1: तो
0: यस,
1: आप बॉलर थे या आप
0: मैं बॉलर ज़्यादा
1: ऑलराउंडर
0: बेहतर
1: थे?
0: था,
1: अच्छा,
0: ऑलराउंडर ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
1: क्या बात है,
0: था
1: तो फास्ट बॉलर थे,
0: फास्ट बॉलर लाइक अ शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी,
0: नहीं।
1: लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि अब जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर
0: फिर
1: बस
0: खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं।
1: डरते डरते,
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो,
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ।
1: हाँ
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले
1: बस
0: ही गए बस।
1: जुनून के तहत खेल
0: हाँ,
1: रहे हैं।
0: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: उनके
0: जैसे
1: मुकाबले,
0: फॉर एग्जाम्पल, वाई ब्लॉक का एक एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो
1: ये
0: मजाक,
1: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती
0: हाँ,
1: होगी।
0: महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
1: इशारा
0: दिया था,
1: किया।
0: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे,
1: अच्छा, ये कोर्स से बाहर का सवाल है।
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस,
1: फिर वापस ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते,
0: हाँ, स्टूडियो चलते हैं ना
1: स्टूडियो
0: तो
1: चलते,
0: मजा आता
1: आकाशवाणी के गलियारों से
0: है।
1: जुड़ी यादें बताई।
0: हाँ
1: पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: हाँ वहां पे
1: उनके
0: क्या,
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो।
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा, हाँ
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ
0: जब हम उनके साथ जाते थे, तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर, दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था तो उनके साथ पूरा, अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए, तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर, जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे, तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है,
1: हाँ, कंपोजिशन,
0: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल,
0: तो उस वक्त क्या होता था सर, कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ, तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने

0: अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी।
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
1: जी।
0: तो पूरे एक हमारा चक्कर
1: लगता
0: तो वहां फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने, जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
1: चेंजेस अकॉर्डिंगली,
0: मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या
0: तो
1: बात है।
0: वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा, फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए।
1: इतने सारे लोग,
0: इतने सारे लोगों के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इंप्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था।
0: वही था, वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। शाम के 5 बजे हैं। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट की तरफ से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम के दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जैसे भी होंगे भाई, हम तो अभी ठीक हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वक्त आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज मैं आपके साथ आपका दोस्त रविशंकर दुबे। आइए दोस्तों, आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी सलाह के साथ। दोस्तों, पाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना, चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, प्रेम हो या कोई अच्छा इंसान। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर ज़रूर गौर करिएगा और अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले सोच समझ कर करें। किसी भी प्रलोभन दिखावे में ना आए और जो भी फैसला करें उसमें फिर अपना 100% कड़ी मेहनत और ईमानदारी से दें, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। फिलहाल हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में गीत के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। युवाणी कार्यक्रम का सफ़र अभी शुरू ही हुआ है।

0: बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: मित्रों, आपका एक बार फिर युवाणी कार्यक्रम में स्वागत है। आइए एक अच्छी खबर के हवाले से हम आपके जुनून और जज्बे को नमन करते हैं, क्योंकि दोस्तों इतिहास साक्षी है कि किसी भी देश का युवा ही उस के विकास और भविष्य को निहारने के लिए अव्वल रहता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हर युवा अपनी धरती का नाम रोशन करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, एक ऐसी ही हमारे देश की बेटी ने भारतीय खेल जगत के इतिहास को गौरवान्वित किया है, जिससे हर बेटी का, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो नाम है ज़िला हमीरपुर के परोल गांव की बेटी सानवी रनौत। जी हाँ, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से घरेलू खेल में अपनी प्रतिभा और क्षमता की एक नई मिसाल कायम की। उनकी प्रतिभा और मूल्यांकन इस बात का उदाहरण है दोस्तों, जब उनको श्रीलंका में आयोजित होने वाली अंडर 18 सब क्वालिफायर के लिए एक भारतीय बास्केटबॉल टीम में हिस्सा लेने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के परोल गांव से आती हैं। निश्चित रूप से दोस्तों, उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण पूरे देश के युवाओं के लिए एक नज़ीर का काम करता है। देश की बेटी को हमारी अपेक्षाओं से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने भविष्य में कामयाब हो, उनका भविष्य उज्ज्वल हो और ओलंपिक में वो भारत का नाम रोशन करें, ऐसी हम उनसे अपेक्षा रखते हैं दोस्तों। और सानवी के जज्बे को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: जी हाँ श्रोताओं, हम अपने युवा दोस्तों के लिए हमेशा अपने कार्यक्रमों में कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं, एक रोजगार सूचना के रूप में और कई प्रकार के ऐसे अवसरों की तलाश की सूचनाओं को लेकर आते हैं जो उनके हित के लिए होती है, उनके भविष्य के लिए होती है। तो ऐसे ही आज युवाणी कार्यक्रम में हम एक रोजगार सूचना लेकर आए हैं। युवा दोस्तों, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2026

के तहत इच्छुक योग्य आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या है 7,300। इन पदों के अंतर्गत 2,700 सामाजिक कल्याण अधिकारी के हैं। इसके अलावा क्लर्क और अन्य पदों पर संख्या जो है 4,600 है। सामाजिक कल्याण अधिकारी के लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा और क्लर्क और उसके समकक्ष पदों पर आवेदक 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष होना जरूरी है। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 35,400 रुपये प्रति माह है। और दोस्तों आपको ये बता दें कि 15 मई से इस रोज़गार सूचना सामाजिक कल्याण विभाग के जो फॉर्म हैं उनके प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और अंतिम तिथि है 16 जून 2026। और इसकी वेबसाइट आपको बता दें swd.gov.in। रोज़गार सूचना समाप्त हुई।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग

0: के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: श्रोताओं, आज की तारीख जो है हम याद कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रमा दास गुप्ता को। उन्हें एक्यूप्रेशर चिकित्सा का जनक माना जाता है। आज उनका जन्मदिन है। और दोस्तों, अगर आपको बता दें एक्यूप्रेशर की अगर हम बात करें तो एक्यू यानी सही और प्रेशर यानी दबाव, यानी शरीर के उस हिस्से पर जहां पर पीड़ा है हो रही है वहां पे अगर सही ढंग से अगर दबाव दिया जाए तो ऐसी जो प्रणाली है, ऐसी जो पद्धति से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है उसे हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में जो आंतरिक अंग हैं जैसे किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, इस तरह के बहुत सारे जो अंग होते हैं, जरूरी अंग होते हैं जो हमारी पाचन क्रिया में डाइजेस्ट सिस्टम के लिए काम करते हैं, ऐसे अंगों के पूरे शरीर में, पूरे सिर से लेकर एक पैर की छोटी उंगली से लेकर पूरे सिर तक के हाथ पैरों में उनके पॉइंट्स रहते हैं जिन्हें हम एक्यूप्रेशर की भाषा में सादृश्य बिंदु कहते हैं। उन बिंदुओं पर यदि हम किसी भी सीस या उंगली से उस पॉइंट्स पर अगर प्रेशर देते हैं, 3, 8, 10 जितने बार प्रेशर देते हैं उतने बार उस पॉइंट से रिलेटेड जो अंग में समस्या है उससे हम निजात पाते हैं। ऐसे चिकित्सा के जनक चंद्रमा दास गुप्ता का जन्मदिन है, हम उन्हें सत सत नमन करते हैं।

भगवान सुशील ने कुश्ती का जुनून अपने भीतर जलाए रखा। उनकी ऊंचाई 167 सेंटीमीटर और 5 फुट 5 इंच की हाइट है। पहलवान सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक और बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक दो ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्हें उनकी इस अनूठी प्रतिभा के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2011 में अर्जुन पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय पहलवान सुशील कुमार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ ही अपने उन श्रोताओं को भी शुभकामनाएं देते हैं जिनका आज जन्मदिन है या वो ये कुछ नए काम से जुड़कर अपनी इस खुशी को दोगुना करना चाह रहे हैं। तो आइए हम भी उनकी खुशी में शामिल होते हैं इस गीत से।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान सुशील कुमार का जन्मदिन। इनका जन्मदिन 26 मई सन 1983 को दिल्ली नजफगढ़ में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की, साथ ही साथ पहलवान

दोस्तों गीत में जरूर अलविदा कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे अलविदा नहीं कहेंगे क्योंकि हम कुछ ही पलों में एक फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। और दोस्तों हम आपसे कार्यक्रम के अंत में चलते चलते एक गुजारिश करेंगे कि जब भी अपने घर से आप निकल रहे हैं बाइक पर तो हेलमेट लगाकर ज़रूर निकलें और गाड़ी के कागज़ जो है ज़रूर लेके निकलें, ताकि आप जिस मंजिल की ओर जा रहे हो आपकी यात्रा शुभ हो और आप बीच में अवरोध ना आए, ताकि आप किसी भी परेशानी में ना पड़े। अपनी गाड़ी के कागज़ हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ युवाणी कार्यक्रम से दीजिए अपने दोस्त रविशंकर दुबे को इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM बैंड 101.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं।

साजन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। समीर की रचना तीर नदीम श्रवण का संगीत था। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फूल और कांटे फिल्म का गीत। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं। समीर का एक बार फिर गीत आपको सुनवा रहे हैं नदीम श्रवण के संगीत संयोजन पर। सुनते हैं फूल और कांटे का ये गीत।

कयामत से कयामत तक, आइए इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, आनंद मिलन का संगीत है, गीत है मजरूह सुल्तानपुरी का।

0: टू स्टेट्स इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ों में। मौसीकार थे शंकर एहसानलाय। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।
0: गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा स्नेह अभिवादन। शुभ शाम, शुभ सांझ। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, दिन भर की तपिश में, जीवन की चुनौतियों पर सुकून भरे चंद्रलग में ही लेकर आज आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं आपका दोस्त रविशंकर दुबे। आई श्रोताओं, कार्यक्रम की

शुरुआत करते हैं एक ही फिल्म के गानों से। दोस्तों, गुड इवनिंग बालाघाट में एक ही फिल्म से क्रम के साथ साथ हम कुछ जानकारियों, रोचक जानकारियों को भी आपके लिए लेकर आए हैं और आज इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम से। और आज की फिल्म है, दोस्तों बता दें आपको, कृष्णा फिल्म के बैनर तले सन 1983 में बनी फिल्म मासूम, जिसे शेखर कपूर द्वारा निर्देशित किया गया। श्रोता, अपने ज़माने की ये बेहद मार्मिक और पारिवारिक फिल्म रही है, जिसे सुप्रसिद्ध लेखक एरिक सेगल के मुख्य उपन्यास मैन वुमन एंड चाइल्ड पर आधारित है। श्रोताओं, फिल्म मासूम मानवीय रिश्तों, प्रेम और क्षमा की एक बेहतरीन कहानी पेश करती है। इस फिल्म में दोस्तों तनुजा, सुप्रिया पाठक और सईद कादरी के साथ प्रमुख भूमिकाओं में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी रही हैं। बाल कलाकार के रूप में जुगल हंसराज, आराधना और उर्मिला मातोंडकर ने बड़ी ही अच्छी भूमिका निभाई है। श्रोताओं, पटकथा, गीत और संवाद गुलजार ने लिखे हैं इस फिल्म के। संगीत आरडी बर्मन ने मासूम फिल्म का दिया है। साथ ही लता मंगेशकर, अनूप घोषाल, सुरेश वाडकर, भूपेन सिंह जैसे मजे हुए गायकों ने इस फिल्म की प्रसिद्धि में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इस फिल्म के जो गीत गाए बड़े ही हिट गीत हुए। खास करके बच्चों का एक गाना इसमें, इस फिल्म में जो शामिल किया गया, वो आज भी बच्चे बड़ी तल्लीनता से सुनते हैं। उनके लिए ये फिल्म एक बड़ी ही रोचक फिल्म रही है, प्रेरणादायी फिल्म रही है, जिससे पूरी पारिवारिक फिल्म हम कह सकते हैं। और इस फिल्म का जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, जो बच्चों में आज कल बड़ा प्रसिद्ध है और बड़े जब से फिल्म बनी है तब से बच्चे इस गाना को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि है ही है गाना ये इतना खूबसूरत। आइए हम भी सुनते हैं।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: चुनाव संदेश के पहले मासूम फिल्म का एक प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी विनीता मिश्रा गौरी और गुरप्रीत कौर की, गीतकार गुलजार और संगीत आरटी बर्मन का था। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। श्रोताओं, इस फिल्म पर चर्चा करते हैं कुछ आवश्यक जानकारियों के बाद। श्रोताओं, 2014 में 26 मई को आज ही के दिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। 26 मई 1999 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने PSLV-C2 द्वारा 3 उपग्रहों, भारत का ओशन सेट, दक्षिण कोरिया का किट सेट और जर्मनी का टप सेट का सफल परीक्षण किया था। और आज जन्म हुआ था दक्षिण भारत की दिग्गज हास्य अभिनेत्री मनोरमा का। बड़ा ही खास दिन है दोस्तों। समय समय पर आपको और इस रोचक जानकारी उनसे भी अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं फिल्म मासूम की। तो आपको बता दें कि फिल्म की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाले एक खुशहाल मल्होत्रा परिवार से। डीके यानी नशरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी इंदु यानी शबाना आजमी अपनी दो प्यारी बेटियों के साथ जीवन जी रहे होते हैं, किंतु एकाएक ये खुशनुमा जिंदगी तब बिखर जाती है जब डीके यानी नशरुद्दीन शाह को पता चलता है कि नैनीताल में उनकी एक पुरानी दोस्त की मौत हो गई है। उस महिला के साथ डीके का अतीत में एक प्रेम प्रसंग था जिससे उनका एक बेटा राहुल जुगल हंसराज जो कि अब अनाथ हो चुका था। हालांकि इंदु शुरू से ही इस बात को स्वीकार नहीं करती है और वो अपने पति के विश्वासघात के रूप में इसे देखती है। लेकिन दोस्तों, डीके यानी नसीरुद्दीन शाह अपने बेटे को अपने साथ दिल्ली ले आते हैं और धीरे धीरे राहुल दोनों बच्चियों के साथ घुल मिल जाता है। लेकिन इंदु ने मन में पति के अतीत का ये प्रमाण एक गहरी टीस बनकर रह जाता है। वो राहुल को अपना प्यार और माँ का दर्जा देने में असमर्थ रहती है जिससे परिवार टूटने के कगार पर आ जाता है।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें,
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें, पटाखा एंड पटाखा सरेखा बाईपास रोड बालाघाट,
1: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
3: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
2: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
3: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
4: शुदा आपका।

एक बार फिर स्वागत है हमारे दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट में। सूचनाओं के इस क्रम को जारी रखते हुए आपको बता दें कि सरकार की पीएनजी यानी पेड नेचुरल गैस योजना एक बड़ी ही उम्दा योजना है जो भविष्य में आने वाली है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुँचाना है। इसके तहत जिन क्षेत्रों में पीएनजी की पाइपलाइन पहुंच चुकी है वहां उपभोक्ताओं को सिलेंडर वाले एलपीजी के बजाय पीएनजी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित अनिवार्य किया जा रहा है, जिसमें गैस सिलेंडर खत्म होने और उसे बुक करने व उठाने की कोई झंझट नहीं होती। मीटर के आधार पर 24 घंटे गैस की आपूर्ति मिलती है। बचत पीएनजी एलपीजी सिलेंडर की तुलना में काफ़ी सस्ती पड़ती है। यह हवा से हल्की होती है इसलिए इसे एलपीजी से अधिक सुरक्षित माना जाता है। जिन इलाकों में पाइपलाइन बिछ चुकी है वहां सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि कोई उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी पर स्विच नहीं करता तो सरकार कुछ समय बाद उस पते पर एलपीजी की आपूर्ति बंद कर सकती है। आप अपने क्षेत्र के गैस वितरण कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस ऐप के माध्यम से नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको पहचान प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड और पते का प्रमाण देना होता है। इसके लिए कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट और इंस्टॉलेशन शुल्क देना होता है। विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इंडियन ऑयल पीएनजी की वेबसाइट देख सकते हैं। अगर आपके इलाके में पीएनजी पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है तो एलपीजी कनेक्शन लेकर नए नियम कानून को के तहत में आ सकते हैं ताकि आने वाले योजनाओं में आपको सुविधा का लाभ मिल सके। दोस्तों, जानकारी के बाद आपको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम हमने सजाया है एक ही फिल्म से क्रम के अंतर्गत, और आज आप सुन रहे हैं फिल्म मासूम फिल्म की कुछ खट्टी मीठी यादें को। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि इस फिल्म के बारे में आपको तो बताते ही रहेंगे। फिलहाल एक गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये कार्यक्रम अभी बाकी है।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट अब संपन्न होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। चलचलाती कड़कती दौतपे की धूप में कुछ खाकर ही घर से निकले और पानी की बोतल जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि आपकी हर मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है, घर में आपका इंतज़ार हो रहा है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना और अपने का ख्याल रखें। इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त रविशंकर दुबे को इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।
0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए लुत्फ उठाते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंकज उदास की गायी नज़्म से।

सुगम संगीत की पहली पेशकश आपने सुनी पंकज उदास की आवाज़ में। संगीतकार भी पंकज उदास थे और गीत लिखा था मुनीर ने। आइए आपको सुनवाते हैं इकबाल बानू की गाई रचना कतल शफाई के लिखी।

आप सुन रहे थे इकबाल बानो को नजराना एल्बम से हम आपको सुनवा रहे थे उनकी नज़्म कतिल शफाई की लिखी हुई। आइए एक बार फिर चलते हैं पंकज उदास की गज़ल को सुनने के लिए, और इस बार इस गज़ल के नगमा निगार हैं शेख अहमद अबूआला और संगीत पंकज उदास का ही है।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, तो आपसे थोड़ी ही देर में यानी शाम 7:05 पर हम दिल्ली से अंग्रेजी समाचार रिले करेंगे। 7:10 पर सुनिएगा भोपाल से प्रादेशिक समाचार। 7:21 पर किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल हम अपने ही केंद्र से प्रसारित करेंगे। 7:30 पर हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 8:30 पर पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे

दिल्ली से समाचार संध्या 9 बजे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 9:15 पर हम दिल्ली से रिले करेंगे समाचार स्पॉटलाइट समाचार। 9:30 पर सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। 10:30 हाजिर होंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम लेकर। 11:00 समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें कि रात 8 बजे हम लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और 8:30 बजे आप सुनेंगे पॉप म्यूज़िक का कार्यक्रम।

गुजरे ज़माने के फिल्मों के गीतों के सदाबहार फिल्म गीतों का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे 10:30 पर। कार्यक्रम होगा सदाबहार फिल्म गीत।

7:21 पर किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल, 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हम आकाशवाणी बालाघाट से ही प्रसारित करेंगे।

इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 होने को हैं। थोड़ी ही देर में अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उसके पश्चात 7:10 पर हम भोपाल से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार। इन समाचार बुलेटिनों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें।

0: 5 मजदूरों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का एक लेख सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस लेख में उपराष्ट्रपति ने सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे महिलाओं, युवाओं और किसानों को सीधा फायदा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि देश अभी अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और यह लेख इसी सफर को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन किया। कल वे नाथुला दर्रे की यात्रा करेंगी और सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन किया। उन्होंने रामघाट पर मां क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर परिक्रमा का विधिवत समापन किया।
1: जल संरक्षण को लेकर हमारे सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल, इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2,00,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्यम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही। सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है।
0: ये परिक्रमा कल गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव द्वारा पूजन के साथ शुरू हुई थी। ये परिक्रमा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 23 वर्ष पहले मां क्षिप्रा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की थी। पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक के बिहरपुरवा गांव में मनरेगा के तहत बन रहे सिंचाई कुएं की मिट्टी धसक गई। इसमें दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कलेक्टर उषा परमार और SP निवेदिता नायडू ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4,00,000 रुपए दिए जाएंगे। सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में पुनः आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में BSF की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि बल ने सीमा की रक्षा के साथ साथ सीमावर्ती लोगों का हौसला भी बुलंद रखा। श्री शाह ने BSF, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलाकर 4-स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया ताकि सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके।
3: BSF के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसकी भी भूरी प्रशंसा करना चाहते। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था BSF ने, वो न केवल डटकर रहे सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी BSF ने बहुत बड़ा योगदान किया।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब दुकानों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को आबकारी नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश भर में अवैध अहाते, देर रात तक शराब बिक्री और ओवर रेटिंग जैसी शिकायतों पर विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें रात को गश्त करेंगी और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हर दुकान पर शराब के दाम दिखाना और QR कोड लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में CBI ने भोपाल पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी ने मृतका के पति समर सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरवाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में FIR दर्ज की है। कल रात टीम ने दोनों आरोपियों से 2.5 घंटे तक पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना भी किया।

जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच आज से शुरू हो गई है। इस हादसे में 13 पर्यटकों की जान गई थी और 28 लोगों को बचाया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब क्रूज को पहले ही नष्ट कर दिया गया है तो उसकी तकनीक जांच अब कैसे होगी। यह भी सामने आया कि क्रूज में एनजीटी के नियमों के खिलाफ कमजोर इंजन लगा था और संचालकों के पास पर्यावरणीय अनुमति भी नहीं थी। आयोग ने सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। देवास जिले के टोंक खुर्द में 14 मई को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए भी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है। आयोग विस्फोट के कारण, लापरवाही और जिम्मेदारी तय करेगा। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और राहत बचाव की प्रभावशीलता की भी जाँच होगी। एक महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए एमपी लॉकर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज एक जगह डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देती है। इस ऐप पर विवाह प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर रसीद समेत 22 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि एआई की मदद से यह एप्लीकेशन खुद ब खुद दस्तावेजों को पहचान लेता है और किसी भी लाइसेंस की मियाद खत्म होने से पहले ही अलर्ट भी भेजता है। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने आज बकरीद का त्यौहार पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाया। सुबह से ही अलीगंज हैदरी मस्जिद समेत शहर की तमाम बोहरा मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफ़ेद पारंपरिक लिबास में सजे समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा के दूसरे दिन प्रदेश में गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। खजुराहो और नौगांव में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिले हीट वेव की चपेट में हैं। अच्छी खबर यह है कि 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत मिले हैं और 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब एक विशेष सूचना। आज 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। इन 12 वर्षों का लेखा जोखा और देश की बदलती तस्वीर पर वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा से खास बातचीत सुनिए आज रात 10 बजे सिर्फ आकाशवाणी भोपाल पर। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गंगा दशहरा के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विवेकानंद घाट पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने श्रमदान किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंडला में आज पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर शहरी परियोजना के सेक्टर 3 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर ECCE दिवस का सफल आयोजन किया गया। खंडवा जिले में यातायात पुलिस के द्वारा परिवहन बसों की विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 138 वाहनों की जांच की गई और धार में 1 जून को रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे, 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में मां क्षिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। तुषार शर्मा मौत मामले में CBI का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में FIR दर्ज और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कर रहे थे FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। 7:21 हुए हैं। आइए सुनते किसान साथियों का अपना कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को आज मैं नंदा बोरकर
1: और ईश्वर का स्वीकारे नमस्कार।
0: और ईश्वर भैया कैसे हैं, क्या हाल है भाई?
1: दीदी मैं तो ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब हमारे किसान साथी जो ग्रीष्म काल में नवतपा का एक अलग ही महत्व होता है। ग्रीष्म काल में हर दिन गर्मी बढ़ती ही जाती है, लेकिन मई में शुरू होने वाले नवतपा के 9 दिन ही क्यों ज़्यादा तपते हैं, गर्म होते हैं, और इन 9 दिनों प्रकृति के साथ क्या संबंध है हम आपको बताते हैं किसान साथियों को। यदि नवतपा नहीं होगा तो प्रकृति के साथ मौसम का तालमेल बिगड़ जाएगा और खेती में उगाई जाने वाली फसल पर इसका अनुचित प्रभाव पड़ेगा। इस पर एक यानी कहावत है, दो मूसा दो कातरा, दो तीड़ी दो ताती, दो की बाड़ी जलहरे, दो विस्बर दो वाय। यानी इस दोहे से ही स्पष्ट होता है कि यदि नवतपा के पहले वो दिन लू और भीषण गर्मी ना पड़े तो चूहों की संख्या बहुत ही बढ़ जाएगी, और जो कि फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा कारक है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ईश्वर भैया दो मूसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब दो कातरा यानी इसके बाद के दो दिन गर्मी ना पड़े तो कातरी फसल को नष्ट करने वाला कीड़ा मरेगा नहीं और फसल की पत्तियों को खाकर फसल बर्बाद कर देगा। तो इसके जो दो तीड़ी यानी अगर पांचवे और छठे दिन गर्मी ना हो तो तीड़ी यानी टिड्डा और उसके अंडे नष्ट नहीं होंगे। इसके बाद आता है दो ताती, जिसके अनुसार सातवें और आठवें दिन तेज गर्मी ना पड़े तो फसलों को बीमारी लगाने वाले हानिकारक कीटाणु और जीवाणु नष्ट नहीं होंगे। अब बात करें दो विस्बर दो वाय की, तो इसके अंतर्गत नब्बे दिन तेज धूप ना पड़े तो विस्बर और वाय यानी सांप बिच्छू जैसे विषैले जीव बहुत बढ़ जाएंगे। यानी नवतपा सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि प्रकृति का संतुलन भी है, इसलिए समय समय पे ये सब चीज़ें जरूरी होती है और हमें सहन भी करना चाहिए जिससे हमारे प्रकृति का संतुलन बढ़ा रहे। और ईश्वर भैया अब हम अपने किसान साथियों को तो समय समय पे ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे अपने किसान साथियों को, और हम जैसे नवतपा के बारे में बताया तो हम सबको अपनी सेहत का इस समय ध्यान रखना होगा, साथ ही जो पशुधन होते हैं उनका भी समय पे ध्यान रखना चाहिए। उनके गौशाला पशुशाला को नित नियम ठंडे पानी से साफ सफाई करते रहे, और जो ठंडा पानी है समय समय पे अपने पशुधन को पिलाते रहे। साथ ही जो गौठान होता है उसके आसपास जो मक्खी मच्छर कीट पतंगे जो पनपते हैं इन दिनों, तो कूलर और पंखे की व्यवस्था करें। साथ ही कीटनाशक दवाइयों का हमारे पशुधन को समय समय पर उपचार कराते रहे, जिससे हमारे पशुधन भी स्वस्थ होंगे और मस्त रहेंगे और हम खेतीबाड़ी में उनका आसानी पूर्वक उपयोग कर सकेंगे। और ईश्वर भैया हम अपने किसान साथियों को आगे और चर्चा में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं यह प्यारा सा लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं।

0: पाँच करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डालें।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: रे बेटे।

0: अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
1: तो पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: किसानवाड़ी कार्यक्रम में पुनः सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है।
5: मैं नंदा और
4: मैं ईश्वर।
5: और ईश्वर भैया, जैसे किसानवाणी का क्रम है, आज हमारे बहनों के लिए विशेष खास तौर पर जो नई नई जानकारी या वार्ताएं जो हमारी महिलाएं बहनें आगे बढ़ी हुई है, जो जैविक खेती कर रही है और एक से एक ऐसे कार्य कर रही है, सिलाई बुनाई कढ़ाई से लेके, कुछ ऐसी बहनें भी है कि जो समूह के अंतर्गत कार्य कर रही है और अन्य महिलाओं को जोड़ रही है, ऐसे उनके उत्थान के लिए जो हमारी बहनें जुड़ना चाहे तो वो समय समय पे हमारे कार्यक्रम से जुड़ के अच्छा लाभ ले सकती है और लाभान्वित हो सकती है।
4: बिल्कुल दीदी, कुछ जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाली जो प्रमुख वार्षिक एवं मौसमी सम्मेलन होता है वो रखा गया है 28 और 29 मई 2026 में। इसका स्थान रखा गया है भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम NASC कॉम्प्लेक्स पूसा न्यू दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज चौहान जी। और इसी के इसका जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि खरीफ फसल हेतु जो कृषि की रणनीतियां हैं, जिसमें आने वाली फसल है खरीफ फसल में उसकी देखभाल कैसे करें, उसकी आने वाली कौन कौन सी चीज़ों को लेकर अपनाएं और नई नई तकनीकियों का सहारा लेके फसल का अच्छा उत्पादन कैसे रखें, इन सब को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रमुख वार्षिकी सम्मेलन रखा गया है। तो किसान भाई इसमें जाकर सम्मिलित होकर अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब कृषि से नई नई तकनीक जो इस सम्मेलन में जुड़कर हमारे किसान साथी अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और नई नई तकनीकों को अपना सकते हैं। तो ईश्वर भैया, जैसे कि हम बात कर रहे थे यानी पूर्व में नवतपा के बारे में, और जो हमारी बहनें हैं जो कृषि के कार्य कर रही है, कृषि से जुड़े छोटे छोटे व्यवसाय कर रही है, जैसे मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बत्तख बटर पालन हो गया, तो इन सब से जुड़ के अच्छा लाभ ले रही है और लाभान्वित हो रही है। और इसके अलावा जो हमारी घरेलू बहनें हैं, सिलाई बुनाई अनेक ऐसे आय के कार्य करके अच्छा उत्पादन ले रही है और अपने आय को आगे बढ़ा रही है। तो हम सुनते हैं यह भेंटवार्ता मुर्गी बकरी पालन से होने वाले लाभ, और हमने बातचीत किया है सोनू शेख से, और सुनते हैं, हम अपने किसान बहनों को सुनवाते हैं यह भेंटवार्ता। बहनों, जिस तरह देखा जाए बकरी पालन मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में हम इन्हें पालकर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन समय समय पर इनकी आहार व्यवस्था, उचित खान पान, उचित देखभाल बहुत ही जरूरी होती है। समय पे नहलाना एवं दाना देना, और उनके साथ ही जो बर्तन में जो दाना आहार दिया जाता है उन बर्तनों की समय समय पर साफ सफाई भी अति आवश्यक है, इससे संक्रमण रोग फैलने की संभावना नहीं होती। पानी भी स्वच्छ साफ देना चाहिए। और जो हमारे साथ है आज सोनू से, आप है वार्ड नंबर 9 वाराणसी से, ये बकरी पालन का कार्य अच्छी तरीके से कर रही है, साथ ही मुर्गी पालन का भी व्यवसाय कर रही है और छोटी सी दुकान भी डाल रखा है इन्होंने, इसके साथ ही अच्छी आमदनी ले रही है। सोनू जी, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद, सभी बहनों को मेरा नमस्कार।
5: सोनू जी, जैसे हम जानना चाहेंगे कि आप बकरी पालन का कार्य कर रही है, मुर्गी पालन का कार्य कर रही है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप इनकी देखभाल किस तरीके से कर रही है।
6: जैसे मैं मुर्गी पालन का ध्यान रख रही हूँ, बकरी पालन का ध्यान रख रही हूँ, बहुत अच्छे से इनकी देखभाल करते हैं हम। इनको समय समय पे इनका खान पान देते, इनका ध्यान रखते, इनको सुबह उठ के खोलते, इनका फार्म अच्छे से साफ सफाई करते हैं, और फिर

0: जो झाड़ झूड़ करके फिर इनको पालन पोषण करते हैं, इनके लिए बाहर से पत्ती लाते हैं, गोभी के पत्ते वगैरह लाते हैं, हम घर में अपने लिए जो हरी सब्जी लाते हैं उसमें से बचा के इनको देते हैं और अच्छे से इनका ध्यान रखते हैं। जैसे खान, चना, खल्ली, मुर्रा, इनसे चर्बी होती है। मुर्रा सुबह देने से बकरी या बकरे को चर्बी होती है, वो मोटे होते हैं, इनके खान पान में अच्छा व्यवसाय आता है, जल्दी से बड़े भी होते हैं।
1: सोनू जी, जैसे जो बकरी पालन के लिए छोटी छोटी सावधानियां तो रखना बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन जिस जगह पे हम इन्हें रखते हैं यानी समय समय पे इनकी जो स्थान होता है उनकी भी साफ सफाई बहुत ही जरूरी है, इससे संक्रमण नहीं फैलता। जैसे अधिक नमी या गीला होने पे मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे जल्दी से पनप जाते हैं और जिससे बकरियां बेचैन होती है और रोगग्रस्त भी हो जाती है। तो ऐसे में जो बकरियों की बांधने की जगह होती है इसकी सफाई किस तरह करती है?
0: इसकी सफाई इस तरह करी जाती है कि इनको रात में बंद करते हैं तो बोरे बिछा देते हैं, फिर सुबेरे बकरी लेंडी करती है तो फिर बोरे उठा के इनकी अच्छे से साफ सफाई धोते हैं, फिर इसको धूप में सुखाते हैं, फार्म को भी झाड़ू अड़ू लगाते हैं, एकदम साफ सफाई अच्छे से पोछा लगाते हैं, इनके ऐसी देखभाल करी जाती है तभी बकरी अपने घर में पाली जाती है।
1: सोनू जी, जैसे जो बकरी बांधने का स्थान होता है कई कई पे डेटॉल, फिनाइल इसका उपयोग करते हैं, तो आप इस तरह सफाई करती है?
0: जी हाँ, हम डेटॉल फिनाइल से धोया जाता है कि ताकि मच्छर मक्खी ना आए और प्रदूषण ना फैले।
1: सोनू जी, जैसे आहार की बात करें तो बकरियों को आहार किस समय और कब कब देती है आप?
0: बकरियों को जैसे बकरी गब्बन होती है तो इनको चना खिलाया जाता है, चने की खल्ली खिलाई जाती है, मुर्रा खिलाया जाता है कि ताकि उनके पेट में जो पल रहा है पोषण, जो बच्चा पल रहा है वो अच्छा हो, रात की रोटी बची वो दे दो बच्चा अच्छा, इससे इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ती है खान पान देने से और बच्चा स्वस्थ होता है।
1: सोनू जी, जैसे जो आहार होता है, आहार जो बकरियों को दिया जाता है तो कई सब्जी के छिलके, जो बचा हुआ कतरन होता है सब्जी का छिलका, ये सब समय समय पे देते हैं, बकरियां भी अच्छी चाव से इसे खाती है और अच्छी ग्रोथ भी होती है, तो इस तरह आप सब्जियों का छिलका देती है?
0: हाँ, इस तरह हम छिलका देते हैं सुबह सुबह के टाइम, 12 बजे के टाइम, 4 बजे, इनको समय समय में इनका खान पान देते हैं, इसलिए ताकि बकरियां भी अच्छी स्वस्थ हो जाती है और बकरियों को भी अपने घर में यानी एकदम वो रहता है कि हमारे घर में अच्छे है करके।
1: कई जो बहनें जो बकरी पालन का कार्य कर रही है वो चने का चोकर, गेहूं का गवांडा इस तरह का भी आहार देती है, इस तरह आप भी देती है क्या?
0: हाँ, इस तरह हम भी देते हैं।
1: सोनू जी, जैसे गाभिन बकरियां होती है इनकी देखभाल किस तरह करती है आप?
0: जैसे गाभिन बकरी होती है इनकी देखभाल इस तरह की जाती है कि जो अन्य बकरियां रहती है उनसे अलग बांधी जाती है ताकि वो बकरी को मार ना सके, उनको चोट ना पहुंचे, इसलिए उन्हें अलग ही बोरे बिछा के अलग बांध के अलग ही रखी जाती है उनकी की देखभाल, उनको खाने पीने का सब अलग दिया जाता है कि ताकि बच्चा अच्छा ग्रोथ हो और ताकि बकरी भी अच्छी रहे।
1: सोनू जी, जैसे बकरी पालन के साथ साथ आप मुर्गी पालन का भी अच्छा कार्य कर रही है, तो मुर्गी पालन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती?
0: मुर्गी पालन करते समय सावधानी रखी जाती है कि उनको समय समय में पानी, दाना, गेहूं, मक्का, इनका समय समय पे ध्यान रखना चाहते हैं हम और इनकी समय समय पे सफाई भी करना चाहते हैं, तब मुर्गी पालन अच्छा लाभ देता है और ताकि अच्छा मुनाफा भी होता है।
1: सोनू जी, जैसे यह भी होता है जैसे जो मुर्गियों के दरबे होते हैं उनकी भी समय समय पर साफ सफाई बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जितनी सफाई हम करेंगे उतनी जो मुर्गियां होती है वो स्वस्थ रहेगी और जो कीट पतंगे हैं वो भी नहीं पनप पाएंगे, तो इनकी भी समय समय पर सफाई बहुत ही जरूरी होती है। मुर्गी पालन करते समय जैसे सफाई पे भी ध्यान दिया जाए तो निश्चित ही अच्छा हम उत्पादन ले सकते हैं। जो दरबे होते हैं मुर्गियां रखने के, तो उनकी सफाई किस तरह करती है आप?
0: हम मुर्गी बंद करने के बाद और दरबे की सुबह खोलने के बाद उनकी साफ सफाई की जाती है कि ताकि उसमें पिस्सू ना हो, कीटाणु ना हो, और ज्यादा मुर्गी नहीं रखी जाती, थोड़ी थोड़ी रखी जाती कि ताकि एक में एक मुर्गी लड़ाई ना करे और एक में को चोट ना पहुंचाए और इससे बीमारी भी ना फैले, इसलिए थोड़ी थोड़ी रखी जाती है उनको अलग अलग और उसकी साफ सफाई भी अच्छी अलग निकालने के बाद अच्छी तरीके से की जाती है।
1: सोनू जी, जैसे आप मुर्गी पालन का भी कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा भी कौन से कार्य कर रही है आप?
0: हम मुर्गी पालन के पीछे हमने दुकान भी खोल रखा है कि ताकि मुर्गी बिक के पीछे हमारा बिजनेस चले और ये अच्छा व्यवसाय है, अच्छा चलता है ये कि मुर्गी पालन जितना हम ध्यान से रखेंगे उतना हमारा व्यवसाय ठीक है, अच्छा चल रहा है। जो हमारी खाली पीली जो बहने हैं वो भी ये मुर्गी बकरी व्यवसाय कर सकती है, इन्हें पाल के अच्छा पैसा कमा सकती है, जो खाली पीली अपने घर में रहते इसका एक व्यवसाय व्यवसाय करना चाहती तो कर सकते हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये कम पैसे में कम लागत में पल सकती है। जो अपन घर में खाली पीली जो बहने, इनसे मैं निवेदन चाहती हूँ कि अपने घर में खाली पीली ना

0: रहने से अच्छा इसी ये व्यवसाय चालू कर सकती है और अपने आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ा सकती है।
1: सोनू जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमारी जो बहनें होती है उनको दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान साथियों, किसान बहनों, इस तरह आप मुर्गी बकरी पालन का कार्य कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं और इन दिनों जो पशुधन है उनका भी अच्छा समय समय पे खिलाई पिलाई और जो आहार प्रबंध है तो उन्हें समय पे आहार देते रहे, साथ ही आपके पशुधन स्वस्थ हो, मस्त हो और हम खेतीबाड़ी में इनका अच्छा उपयोग ले सकते हैं। अब समय है बहनों, हम आपको एक प्यारा सा लोकगीत सुनवाते हैं, तो चलिए हम भी सुनते हैं यह प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, जनकलाल बोपचे और साथियों की आवाज़ में सुनाइए प्यारा सा लोकगीत। किसान भाइयों, जैसे कि हमारे अभी का जो समय है वो है रबी फसल की कटाई का। रबी फसल की कटाई में हमारे किसान भाई, चूँकि धान बाहुल्य जिला है और धान की कटाई का कार्य चालू है, तो किसान भाइयों को अभी सही समय है कि सही समय पर कटाई कर ले, और कटाई के बाद अगर वो विक्रय कर सकते हैं तो बिल्कुल इसका विक्रय करें, किंतु अगर विक्रय नहीं होता है तो उसका उचित भंडारण की व्यवस्था जरूर रखें। ऐसे स्थान का चयन करें जहां ठंडक बनी न रहे। अगर ठंडक स्थान रहता है तो धान खराब होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा आप ऐसे बोरे या ऐसी बोरियों का इस्तेमाल करें जिसमें नमी अधिक सोखने की शक्ति ना हो। नमी धारण करने से फफूंद लगने की भी संभावना होती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि आने वाली फसल खरीफ फसल का है और किसान भाई अभी से जोर शोर से तैयारियों से लगे हुए हैं। जैविक खाद और जैविक कीटनाशक हमारे किसान भाई बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी सभी फसल की नर्सरी में भी, और बीजोपचार भी कर सकते हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हमें जानकारी दे रही है श्रीमती प्रतिभा टेमरे जी, जो कि ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर है वारासिनी बालाघाट में। तो सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: नमस्कार किसान साथियों, जैसे कि धान की फसल कटाई का समय अभी चल रहा है, तो किसान साथियों से निवेदन है कि जब भी फसल काटते हैं तो करपे अलग अलग रखें अपने खेत पे, सूखी जगह पे, और साथ में दूसरे किस्म का यदि धान दूसरी जगह लगा है पास में खेत में तो उसको मिक्स ना करें। इसके अलावा जब फसल काटते समय किसान साथी 90% जब नमी रहती है तभी फसल काट लें, जिससे कि ज़्यादा धान छिटकता नहीं है, और 100% सूखने पर नहीं काटे, 90% फसल पक जाती है तभी फसल को काट के धान के कड़पे तैयार रखें और अलग अलग करके रखें, और फिर समय पे उसको थ्रेसिंग करके अच्छी जगह स्टोर करके रखें जिसमें हवा ना जानी चाहिए। ऐसे पैक्ड डिब्बे हो गए या फिर जो मिट्टी के बनाते हैं गांव में कोठियाँ, उस पे ड्रम पे, तो पैक्ड एयर कंटेनर में ही धान का भंडारण करके रखें। साथ ही किसान साथियों, धान, चना, तिलहनी क्राप, दलहनी क्राप, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें अभी खेतों में जा रही है, तो किसान साथी ये प्रयास करें, अधिकांशतः बालाघाट जिले में सीजन में मैक्सिमम किसान जो होते हैं वह धान की ही फसल लेते हैं, तो धान की फसल ना ले

करते हुए वो दलहनी फसलों की ओर और तिलहनी फसलों की ओर जाएं, क्योंकि अभी दलहनी फसलों का समर्थन मूल्य जो सरकारी रेट बोलते हैं किसान साथी, वो भी अच्छा मिलता है और तिलहनी फसलों का भी रेट अच्छा मिलता है। इसके साथ ही जो भूमि में एक ही फसल लगाने से कीट व्याधि बढ़ते हैं और अगली फसल में भी वही कीट व्याधि बीमारियां लगती हैं, लेकिन जैसे कि अगर धान के बाद अपन दलहन को लगाते हैं, चने को लगाते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं, तो गेहूँ जो अपनी ज़मीन है किसान साथियों की, उसमें उर्वरता बनी रहती है, क्योंकि जितनी भी दलहनी फसलें रहती हैं वह नाइट्रोजन को वायु से शोषित करती हैं, उनकी जड़ों में एक प्रकार की गठान रहती है जिससे कि वो नत्रजन को एकत्रित करती है और ज़मीन की उर्वर शक्ति बढ़ाती है। इसके साथ ही कीट व्याधियों से भी परेशानी नहीं होती और साथ में वातावरण के तापमान नियंत्रण में भी ये बहुत सहयोग करते हैं। इसी के साथ किसान साथी जब भी दलहनी फसल लगाएं तो उसका उपचार यदि वो प्राकृतिक खेती यानी कि प्राकृतिक बीजोपचार से करते हैं तो उसमें और मतलब अंकुरण प्रतिशत अच्छा होता है, पौधे अच्छे जमते हैं और बीमारी और कीट लगने की संभावनाएं कम होती है। किसान साथी उसके लिए बहुत ही कम रुपये में बीजा अमृत नाम से ही बीजा अमृत है, जैसे कि बीज अमृत, बीज को अमृत मिल जाता है। इसके लिए सामग्री घर पे ही उपलब्ध हो जाती है किसानों के यहाँ, जैसे कि देसी गाय का गोबर 5 किलोग्राम ले लें, गौमूत्र 5 लीटर, चूना 250 ग्राम, पानी 20 लीटर और खेत की या बड़ के पेड़ की मिट्टी 5 मुट्ठी। इन सभी पदार्थों को किसान साथी पानी में घोल लें और 24 घंटे तक के रख लें। दिन में 2 बार लकड़ी से इसे हिलाते रहें। इसके पश्चात दूसरे दिन ऊपर पे ये बीजामृत डालकर मिला लें, जिससे कि बीज पूरी तरह उपचारित हो जाते हैं। इसके बाद इसको छाया में सुखाकर बुवाई करने से बहुत ही अच्छा उत्पादन आता है और अंकुरण भी बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ किसान साथी बहुत परेशान होते हैं चना की फसलों में उखटा लगने की परेशानियों से। यदि किसान साथी मठे से उपचारित करके चने को बोते हैं तो भी किसान साथियों के यहाँ उखटा रोग लगता नहीं है। वो उखटा रोग के लिए मठा बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में काम करता है। सेकेंड, किसान साथी मठे से भी बीजों को उपचारित करके बो सकते हैं। इसके साथ ही तिलहनी मतलब जो फसलें हैं जैसे कि राम तिल, सरसों, अलसी, ये जब भी किसान साथी लगाएं तो इस पे सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। कम से कम 5 किलो सल्फर वो अपने प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ की दर से भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि सल्फर अलग अलग मतलब जैसे कि किसानों को ये पता होना चाहिए कि उनकी ज़मीन में कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व है। इसके लिए किसान साथी सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी मिट्टी जांच के लिए अपने ग्रामीण विस्तार अधिकारी से मिल सकते हैं और अपने समस्त एओ से संपर्क करके वो मिट्टी नमूने की जांच भी करवा सकते हैं। और साथ ही तिलहनी फसलों में सल्फर का प्रयोग करने से तेल की मात्रा में वृद्धि होती है और अच्छी क्वालिटी का तेल उत्पन्न होता है। और सभी किसान साथी तिलहनी फसलों के बीज के लिए और दलहनी फसलों के बीज के लिए अपने अपने एओ कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। विकासखंड स्तर पे जो कार्यालय है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का, वहाँ पे आप आ सकते हैं और चने के बीज, जो चने की बिजाई है वो अच्छी किस्म का ले सकते हैं, गेहूं की बिजाई ले सकते हैं, साथ ही तिलहनी फसलों में सरसों, अलसी, राम तिल की बिजाई और कुसुम, अभी नई क्रॉप कुसुम भी यहाँ पे लगाई जा रही है, कुसुम का भी बीज वो ले सकते हैं। दलहनी फसलों में सरकार की तरफ से 3300 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी पे बिजाई मार्ग प्राप्त होगी किसानों को और साथ ही तिलहनी फसलों पे 4000 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान के दर से तिलहनी फसलें भी किसानों को प्राप्त होगी बिजाई के रूप में। और किसान अनुदान पे बीज प्राप्त करके अपने अपने खेतों में लगाकर अच्छा उत्पादन लेकर लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ सभी किसान साथी आगे फसलों को जब लगाते हैं तो एक बार जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग उन्हें करना चाहिए, जिससे कि किसान की जो फसलें हैं उसमें किसी भी प्रकार के रोगों का प्रकोप नहीं होता, कीटों का प्रकोप नहीं होता। तो जीवामृत भी बहुत आसानी से बनाया जा

0: सकता है। और ये सभी प्रकार की फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे दलहनी हो, तिलहनी हो, या सब्जी वाली फसलें हों, या फिर बागवानी की फसलें हों। इसके लिए आप खड़ी फसल में भी छिड़काव कर सकते हैं, जैसी अभी की खड़ी फसल है 60 से 90 दिन की, तब आप इसमें छिड़क सकते हैं। दूसरा छिड़काव 90 से 120 दिन में भी आप कर सकते हैं। जीवामृत बनाने के लिए किसान साथियों को बहुत ज़्यादा दामों का मतलब नहीं लगता है, कम लागत में यह जीवामृत बन जाता है, जिसमें देसी गाय का गोबर 10 kg, देसी गाय का मूत्र 8 से 10 लीटर, गुड़ 1 से 2 किलोग्राम, बेसन 1 से 2 किलोग्राम, पानी 180 लीटर, और पेड़ के नीचे की मिट्टी बड़ के पेड़ के नीचे की हो तो अच्छा है। जीवामृत का मतलब ही है कि यह जीवों से बना हुआ अमृत है। उपरोक्त सामग्रियों को प्लास्टिक के एक ड्रम में डालकर लकड़ी के एक डंडे से घोलना है, और इस घोल को 2 से 3 दिन तक सड़ने के लिए छाया में रख देना है। अब प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है, और इसको बोरे से जब ढक देंगे तो नमी बरकरार रहेगी, ऊपर से हवा नहीं जाएगी।
1: किसान भाइयों, इस जानकारी के बाद आपको मौसम संबंधी सूचना दे दें कि बालाघाट जिले में दिनांक 27 से 31 मई 2026 की अवधि में हल्की वर्षा, बिजली गिरने, आंधी तूफान, हवा की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उष्ण लहर तथा गर्म रात की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री से 45.9 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री से 28.1 डिग्री सेल्सियस तक तथा सुबह हवा में 55 से 37% तथा दोपहर में 21 से 23% नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे दक्षिण पूर्व दिशा में रहने की संभावना है। यह जानकारी जिला कृषि मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट द्वारा प्रदाय की गई है। तो किसान भाइयों, इस जानकारी के बाद अब लेते हैं विदा।
2: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

FM बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: हीरो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर। कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं प्यार तो होना ही था फिल्म से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और आशा भोसले की, संगीत जतिन ललित का।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

सलाखें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, कुमार सानू अलका याग्निक को साथियों की आवाज़ों में। समीर ने इस गीत को लिखा था, संगीत था समीर सेन का। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में गीत आप सुन रहे थे प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से। बप्पी लहरी की तर्ज पर गीत लिखा था इंदिवर ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं सड़क फिल्म से।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के गाए सड़क फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:30 हुए हैं। वक्त है पॉप म्यूजिक के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं नितिन बाली के गाए कुछ पॉप गीत। कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं राज सिंघा का लिखा हुआ, नितिन बाली का गाया हुआ। सुनिए ये पॉप सॉन्ग।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं पॉप म्यूज़िक का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं नितिन बाली। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गाना।

श्रोताओं, इसी के साथ पॉप म्यूज़िक का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने नितिन बाली के गाए कुछ पॉप गीत। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में अनुप्रसारित करते हैं। कृपया आप प्रतीक्षा करें।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी।

0: इन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक

खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों से। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया, गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार।
4: इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, एनु वेख जे कुड़िया तो कहंदी ओ
3: माजा। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

20 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

करण के पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

0: कुछ।
1: करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: मानना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजाद खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पॉन्स के बीच न

कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आईं जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

0: करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।
1: ओ शेर

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

प्यार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो न हो। चलो इन्हें संजो लें अपनी जिंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख की कोपलें हरी हो उठती हैं, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झड़ती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटखेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रहीं और कानाफूसी करती रहीं पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

यादों के रंग से सजाए हैं ख्वाब, मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं, ये ख्वाब सिर्फ इंतज़ार होते हैं।

यादें हमारी जिंदगी का आईना होती हैं, उसमें नजर आते हैं बीते समय। यादों का एक सिरा पकड़ते हैं कि बस चलचित्र की तरह जमाने भर की बातें हमारी आंखों के सामने ठहर जाती हैं। कई बार यादों का दामन थाम हम घंटों बैठे रहते हैं, खुद से गुफ्तगू करते भूल जाते हैं खुद को। वक्त का कौन सा सिरा आज है यही नहीं याद रहता, गुजरा जमाना है या है हकीकत। कुछ यादें हमें इतनी अजीज होती हैं कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

वही रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सूना सूना सा होगा। कहीं कुछ कमी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिन्हें हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

अभिमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। एस टी बर्मन का संगीत था, गीत था मजरू सुल्तानपुरी का। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक हसीना दो दीवाने, इस फिल्म का गाना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है और अनजान ने इस गीत को लिखा है। आइए सुनते हैं एक हसीना दो दीवाने, इस फिल्म का गाना।

एक हसीना दो दीवाने, इस फिल्म का गीतार सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश चंद्र माथुर की आवाज़ों में। कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत की तर्ज तैयार की थी और गीत लिखा था अनजान ने। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में गाया गाना इज्जत फिल्म से।

साहिर लुधियानवी के शब्द को आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत संयोजन पर। आवाज़ें लता मंगेशकर उस साथियों की थी। आइए कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुरेश वाटकर और लता मंगेशकर की युगल स्वर में। प्रेम रूप फिल्म का यही गाना है, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सदाबहार फिल्म गीतों के कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं पाकीज़ा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल सर में यह गाना आप सुन रहे थे। पाकिस्तान फिल्म से गुलाम मोहम्मद का संगीत था, कैफे भोपाली का गीत था। इसी के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी बालाघाट है, रात के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं।